मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी पहली सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेयर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास

0: बात है कि समझौते में सीफेयरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: जी सात शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि एआई की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता सीईटीए इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हमारा देश केवल एक भूभाग नहीं बल्कि विविध संस्कृतियों, परंपराओं और अनगिनत प्रेरणादायक कथाओं का संगम है। ये वो भूमि है जहाँ त्याग, सेवा और समर्पण के आदर्श पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहे हैं। आइए इस पावन प्रभात में अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करें।

कृष्ण का स्मरण जीवन में आनंद और आशा का संचार करता है। वे हमें सिखाते हैं कि कर्तव्य निभाते हुए भी मन को ईश्वर से जोड़े रखा जा सकता है।

भगवान शिव सरलता, तपस्या और करुणा के प्रतीक हैं। उनकी आराधना मन को स्थिरता प्रदान करती है और जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। आइए भोलेनाथ की महिमा का गुणगान सुनते हैं।

भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण भी है। जब मन ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी सरल प्रतीत होने लगती हैं। यह अगला भजन उसी अटूट श्रद्धा और विश्वास का संदेश देता है।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 यानी आज सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है आंखों के विभिन्न प्रकार के रोग और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति कोचर से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 यानी आज सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो फ़ोन करना ना भूलें। गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 यानी आज सुबह 10:32 से 11:02 तक। ये कार्यक्रम सुना जा सकता है विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: मनुष्य क्या चाहता है? सुख। और क्या पाकर वो स्थिर होता है? संतोष। पर क्या सुख और संतोष एक ही हैं या फिर दोनों के रास्ते अलग अलग हैं? आइए आज इसी पर शांत भाव से विचार करें। मनुष्य का जीवन संघर्षों, इच्छाओं और आकांक्षाओं से भरा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो किसी न किसी सुख की तलाश में लगा रहता है। अच्छा भोजन, सुंदर वस्त्र, बड़ा घर, सम्मान, धन, पद, ये सभी सुख के बाहरी साधन माने जाते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि जितना अधिक मिलेगा उतना ही सुखी जीवन होगा। परंतु क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या जिनके पास बहुत कुछ है वे सचमुच संतुष्ट और प्रसन्न हैं? आज का समय भौतिक उन्नति का समय है। सुविधाएं बढ़ी हैं, तकनीक ने जीवन को सरल बना दिया है, पर मन की अशांति कम नहीं हुई। इसके विपरीत तनाव, अवसाद और असंतोष बढ़ता जा रहा है। सुख यदि बाहर की वस्तुओं पर निर्भर हो तो वो स्थायी नहीं हो सकता। जो आज सुख देता है वही कल बोझ भी बन सकता है। सुख क्षणिक होता है। नई वस्तु खरीदने पर, नई सफलता पाने पर, प्रशंसा मिलने पर मन प्रसन्न होता है, पर कुछ समय बाद वही मन फिर किसी नई इच्छा में उलझ जाता है। इच्छाओं की ये दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है और 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। यही असंतोष का मूल है। इसीलिए कहा गया है, इच्छाओं का अंत ही सच्चा सुख है। इसके विपरीत संतोष भीतर का भाव है। संतोष का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे या उन्नति की आकांक्षा ना रखे। संतोष का अर्थ है जो प्राप्त है उसमें कृतज्ञता और शांति का अनुभव करना। संतोष वो स्थिति है जहाँ मनुष्य अपने वर्तमान को स्वीकार कर पाता है और भविष्य के लिए कर्म करता है बिना अत्यधिक चिंता और लोभ के। हमारे भारतीय दर्शन में संतोष को महान गुण माना जाता है। योग दर्शन में संतोष को नियमों में स्थान दिया गया है। कहा गया है, संतोषाद अनुत्तमः सुख लाभः, अर्थात संतोष से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। ये वो सुख है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। आज के समाज में तुलना की प्रवृत्ति ने संतोष को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगे हैं। किसी के पास बड़ा घर है तो हमें भी चाहिए। किसी का बच्चा आगे बढ़ गया तो हमें भी वैसा

0: से ही अपेक्षा है। ये तुलना मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। संतोष तुलना में नहीं, स्वीकार में है। सुख और संतोष का एक गहरा संबंध है, पर दोनों समान नहीं है। सुख बिना संतोष के अधूरा है और संतोष बिना सुख के भी पूर्ण हो सकता है। संतोष ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। सुख यदि न भी हो तो संतोष जीवन को अर्थपूर्ण बना देता है। ग्रामीण जीवन को देखें, सीमित साधन, कठिन परिश्रम, पर आपसी सहयोग और अपनापन, वहां जीवन सरल है, अपेक्षाएं कम हैं, इसलिए संतोष अधिक दिखाई देता है। इसके विपरीत शहरी जीवन में सुविधाएं अधिक है, पर समय कम है, संबंध कमजोर है और मन सदैव किसी न किसी दौड़ में लगा रहता है। यही कारण है कि सुख होते हुए भी संतोष नहीं है। ये भी सत्य है कि पूर्ण संतोष कोई स्थिर अवस्था नहीं है, ये एक साधना है, अभ्यास है। प्रतिदिन अपने मन को समझाना पड़ता है कि जो मिला है वो भी किसी वरदान से कम नहीं। छोटी छोटी बातों में सुख ढूंढना, जीवन के साधारण क्षणों का आनंद लेना। अंत में प्रिय श्रोताओं, यही कहना है कि सुख बाहर की परिस्थितियों से आता है और चला भी जाता है, पर संतोष भीतर से उपजता है और हमारे साथ बना रहता है। यदि हम सुख के साथ साथ संतोष को भी जीवन में स्थान दें तो हमारा जीवन न केवल सफल होगा बल्कि सार्थक और शांत भी होगा। आज से ही ये संकल्प लें कि हम तुलना कम करेंगे, कृतज्ञता अधिक रखेंगे और जो मिला है उसमें आनंद ढूंढेंगे, क्योंकि सच्चा सुख वही है जो संतोष के साथ जुड़ा हो।
1: तो ये था आज का चिंतन।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, खेती की बातें। इसमें खेत बचाओ अभियान के बारे में आप जानेंगे, वाचन अनुराधा शर्मा।
3: खेत बचाओ अभियान, सभी किसान भाई बहन का डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों ने आज अपन जानेगा खेत बचाओ अभियान से किसान नख किना तरीका से बड़ा बड़ा फायदा होएगा। 1 जून से 30 जून तक भारत सरकार का कृषि मंत्रालय का द्वारा देश भर में खेत बचाओ अभियान चली रोज। किसान भाई बहन नखा मिट्टी की सेहत, संतुलित उर्वरक नको उपयोग का साथ टिकाऊ खेती का प्रति जागरूक करने का लेना ई अभियान चली रोज, जेका में कि किसान भाई बहन की आय बढ़ावना का लेना न साथ में पर्यावरण संरक्षण पर भी ये अभियान केंद्रित छे। इन अभियान को उद्देश्य केवल फसल की बढ़वार करनु या उसकी पैदावार का बढ़ावनु नहीं, बल्कि ये भी छे कि अपनी आने वाली नई पीढ़ी ने का लेना कृषि योग्य जमीन का भी सुरक्षित रखनु। इन अभियान का अंतर्गत गाँव में जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम न खेत नमा प्रदर्शन आयोजित करी न किसान भाई नख जागरूक करने का साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति की नई तकनीक खबी उनका समझावना की व्यवस्था रहेगा। विशेषज्ञ गांव में जाई न किसान भाई बहन नख ये बताई राज कि मिट्टी की जांच का आधार पर उर्वरक को उपयोग करनु किना तरीका से सही छे ये जानकारी भी देगा। जैविक खाद न हरी खाद को का ही महत्व छे ये भी बताई राज न साथ में पानी को संरक्षण खेती का लेना कितो जरूरी छे ये सब बात न की जानकारी विशेषज्ञ हमारा किसान भाई बहन का दहराज। प्राकृतिक खेती न पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति न कभी इना अभियान का माध्यम से बढ़ावो दहराज। इना अभियान में कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र का साथ साथ स्थानीय प्रशासन की भी सक्रिय भूमिका छे। कृषि विज्ञान केंद्र का कृषि वैज्ञानिक न अधिकारी गांव का दौरा करी न किसान नख तकनीकी मार्गदर्शन भी दई राज। कम लागत में अधिक उत्पादन का लेना किसान भाई बहन नख फसल प्रबंधन, जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाणु एका साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का व्यवहारिक ज्ञान भी किसान भाई बहन नख मिली रोज, जेका से कि खेती की लागत कम होएगा न उत्पादन बेहतर मिलेगा। खेत बचेगा तो किसान भाई बहन मजबूत होएगा,

0: किसान मजबूत होएगा तो देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होएगा। असी सोच का साथ खेत बचाओ अभियान खेत का टिकाऊ लाभकारी न भविष्य का सुरक्षित बनावना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम छे। तो अपुनी कही सकांज कि खेत बचाओ अभियान की मुख्य गतिविधि न मृदा परीक्षण मृदा स्वास्थ्य कार्ड संतुलित पोषण प्रबंधन प्राकृतिक खेती उन्नत बीज न को उपयोग न जल संरक्षण आधारित कृषि पद्धति न का बढ़ावो देणुज ई मुख्य संदेश छे। न मिट्टी की गुणवत्ता सीज मजबूत किसान बनेगा उन्नत कृषि न राष्ट्रीय समृद्धि की मूल आधारशिला छे मिट्टी की गुणवत्ता। तो खेत बचाओ अभियान में जितनी भी जानकारी न दई राज सब लो न अपना खेत न का अच्छा तरीका से बचाओ।
1: खेती की बातें इसमें खेत बचाओ अभियान के बारे में बता रही थी अनुराधा शर्मा।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रहना।
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवाधिदेव महादेव ने जब ये समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसकी हस्तरेखाएं

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। स्वर था सुरेश वाडकर का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आपको सुनवा रहे हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:20 पर कार्यक्रम साहित्यिकी के अंतर्गत सुनिएगा नितिन राठौर की कहानी एक यात्रा ऐसी भी। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल आप सुनेंगे सुबह 7:35 पर। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुबह 8:30। लोक संगीत में सुबह 9:00 आपको सुनवाएंगे स्वाति उकले और साथी के गाए लोकगीत। सुगम संगीत में सुबह 9:15 पर कलाकार होंगी वैशाली बकोरे। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 9:30। इसमें आपको सुनवाएंगे पंडित सतीश व्यास का संतूर पर बजाया राग मियां मल्हार। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे सुबह 10:00। सुबह 10:05 से प्रसारित होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। दिन में 11:00 से आप जानेंगे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। दिन में 11:00 सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 12:00, दिन में 2:00। संग्रहालय से कार्यक्रम होगा दिन में 12:30। दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम होगा। इसमें आरंभिक चर्चा होगी सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस और नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में। आपकी सुरक्षा आपके हाथ इस क्रम में सुनिएगा सड़क दुर्घटना के समय लापरवाही ना हो। डॉक्टर रागिनी

माथुर की वार्ता सुनिएगा, जलवायु परिवर्तन, चुनौतियां और महिलाओं की भागीदारी। रूप लावण्य क्रम में आप जानेंगे उमस में पसीने से कैसे बचें। दिन में 1:30 पर लोक संगीत सुनिएगा और दिन में 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। शाम की सभा में युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा 5:00। फिल्म संगीत 5:45 पर। 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:30 पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आधारित रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। 6:45 पर लोक संगीत में स्वाति उखले और साथी के गाए लोकगीत आप सुनेंगे। खेती गृहस्थी कार्यक्रम में 7:20 पर बात होगी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। मनीष वैद्य की भेंटवार्ता का विषय होगा विश्वास और विकास के 12 साल बेमिसाल उपलब्धियों के साथ। साथ ही आप सुनेंगे लोकगीत। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया होगा 8:00 से चित्रगीत में सदाबहार फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे 9:15। 9:30 से आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन और 10:30 शास्त्रीय संगीत में आपको सुनवाएंगे उस्ताद निसार हुसैन खां का गाया राग जय जयवंती। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं सम्प्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमन समये विश्रांति निलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीय भव्यं स्वागतम् अकुर्वन्। अद्य प्रधानमंत्री प्रमुख विपणीनां मुख्य कार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति, तत्र च स्वसंबोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं संधि निश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिसायाः च पञ्चदिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिसायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थ दिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा क्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्यां खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं सम्प्रति जगति 66.2 कोटि जनाः तीव्र खाद्य असुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिन्ता प्रदर्शिता यत् 20-22 परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यंकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 यानी आज सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है आंखों के विभिन्न प्रकार के रोग और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति कोचर से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 18 जून 2026, समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 2710223 और 2710224। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो फ़ोन करना ना भूलें। गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 यानी आज सुबह 10:32 से 11:02 तक ये कार्यक्रम सुना जा सकता है विविध भारती इंदौर FM 101.6 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई।
2: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
3: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
6: जिसमें होती है नित नई जानकारी।

0: कारिया मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा किसान
2: आकाशवाणी इंदौर।
0: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: पर सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

ओहो क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह आप और हम हुए एक साथ, तो सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति आज से प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर। प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। महाराणा प्रताप का जीवन वीरता शौर्य पराक्रम का प्रतीक, कहा मुख्यमंत्री ने। और भारत ने पुरुष क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को और महिला T20 क्रिकेट मैच में नीदरलैंड को हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश में 5 दिवसीय दौरा कर रही हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य उनका इंदौर विमानतल पर स्वागत करेंगे। इसके पश्चात वे बैतूल जाएंगी। वहां वे ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम के बाद वे ओंकारेश्वर पहुंचकर मंदिर में दर्शन एवं आरती में सम्मिलित होंगी। 19 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर में कार्यक्रम में शामिल होंगी। 20 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जबलपुर पहुंचेंगी और 21 जून वहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में सहभागिता करेंगी। 22 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और इसके बाद वे ग्वालियर पहुंचकर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। पेरिस में प्रधानमंत्री भारत

0: में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जीवन वीरता, शौर्य, पराक्रम, त्याग का प्रतीक है। उनका नाम स्मरण करते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। महाराणा प्रताप ने तमाम कठिनाइयों के बीच भी राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखा। समाज का हर वर्ग, देश की अस्मिता और आत्मसम्मान के लिए महाराणा प्रताप को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर भोपाल के महाराणा प्रताप नगर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने समाज के प्रतिभाशाली डॉक्टर, युवा खिलाड़ियों और समाज सेवियों को मंच से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा,
2: यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर जब बढ़ने की बात आएगी तो हमारे लिए भौतिक अधोसंरचनाएं जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं के लिए, लेकिन गौरवशाली अतीत के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे कामों के सिलसिले में हमने कमिटमेंट किया था कि महाराणा प्रताप जयंती पे छुट्टी होगी तो पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर अपने उस अवकाश को भी निभा रहा है, लेकिन अवकाश के साथ साथ उनके जीवन के सभी पक्षों को आने वाली पीढ़ी को जानने के लिए भी हम पाठ्यक्रम में भी महाराणा प्रताप को जोड़ने वाले हैं, ताकि स्कूल एजुकेशन के माध्यम से उनके जीवन के सभी पक्षों से भविष्य की पीढ़ी को भी सीखने को मिले।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के भव्य आयोजन के लिए हजारों करोड़ के विकास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। उज्जैन, इंदौर और आसपास के सभी जिलों में विकास को गति मिल रही है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन में धार, नागदा और रतलाम को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल उज्जैन जिले के नागदा में बालाजी धाम में श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा व ध्वज पूजा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉ. यादव का श्री बालाजी धाम में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत विशेष रूप से उपस्थित थे। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन वुमेन द्वारा संचालित सेफ सिटीज एंड सेफ पब्लिक स्पेसेस फॉर वुमेन परियोजना में जबलपुर शहर को शामिल किया गया है। जबलपुर का चयन देश के एकमात्र शहर के रूप में किया गया है। विश्व के चुनिंदा 65 शहरों में संचालित इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत जबलपुर में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक सर्वसाधारण सार्वजनिक वातावरण विकसित करने की दिशा में कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस उपलब्धि पर कल मानस भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े अनुभव और सुझाव साझा किए। इन सुझावों के आधार पर शहर के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं, छात्राओं और कामकाजी युवतियों के लिए सार्वजनिक स्थलों को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। वहीं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में कल रात भारत ने नीदरलैंड को 95 रनों से हरा दिया। लीड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड को 209 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। जवाब में नीदरलैंड की टीम 114 रन पर सिमट गई। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मुकाबले में कल भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। आज अगले मुकाबले में भारत का सामना जर्मनी से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 19 जून को विकासखंड कोलारस के ग्राम पचावली और 20 जून को जिला मुख्यालय शिवपुरी स्थित मानस भवन में

प्राकृतिक खेती कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी आज आगरमालवा स्थित नमो उपवन में वृक्षारोपण करेंगे और साथ ही जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नर्मदापुरम जिले में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर मतदाता सूची को अपडेट करने का काम जारी है। इसके तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, जबकि मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले नाम हटाने और अन्य त्रुटियों को सुधारने की कार्रवाई की जा रही है। इंदौर जिले के चंद्रावतीगंज में आगामी 20 जून को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। कटनी जिले में आयोजित जनकल्याण शिविरों के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है। शिविर में अब तक 13,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 12,156 का निराकरण किया जा चुका है। श्योपुर जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत छात्रों के लिए संचालित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में रसोइयों के लिए कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर। प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। महाराणा प्रताप का जीवन वीरता शौर्य पराक्रम का प्रतीक, कहा मुख्यमंत्री ने। और भारत ने पुरुष क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को तो वहीं महिला T20 क्रिकेट मैच में नीदरलैंड को हराया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर होगा। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। साहित्य की के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं नितिन राठौर की कहानी एक यात्रा ऐसी भी।

नमस्कार श्रोताओं, मैं नितिन राठौर आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरे द्वारा लिखी कहानी एक यात्रा ऐसी भी। डब्बा खोलते ही आलू प्याज की सब्जी की सौंधी सी महक पूरे कंपार्टमेंट में फैल गई। अमूमन मैं रात को 8:30 बजे के बाद ही खाना खाता हूं, मगर उस सौंधी सी सुगंध ने न जाने क्या जादू किया कि मुझे भी कुछ भूख सी लग ही गई। धर्मपत्नी ने शाम के लिए खाना पैक किया ही था तो सोचा खाना खा ही लिया जाए। बस यही सोचकर ऊपर की बर्थ पर रखा अपना टिफिन उतारा और उसमें से खाने का टिफिन बाहर निकाल लिया। खैर, बात बात में मैं आपको बैकग्राउंड बताना तो भूल ही गया। मुद्दे की बात यह है कि आज सुबह आराम से ऑफिस पहुंचा ही था कि पहुंचते से बॉस का फरमान आ गया कि कल सुबह लखनऊ पहुंचना है अर्जेंट। एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट है जो सिर्फ 2 दिन के लिए आया हुआ है। बॉस ने इतने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नानुकुर की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सो मन मार के तैयार हो गए। डायरेक्ट कोई फ्लाइट इंदौर से है ही नहीं लखनऊ के लिए, अतः ताबड़तोड़ तत्काल रिजर्वेशन करवाया गया। भला हो रेलवे की इस तत्काल सुविधा का। ऑफिस से निकलते हुए ही घर पर फोन कर दिया था। भागते दौड़ते घर पहुंचा तो श्रीमती जी ने बैग पैक करके रखा हुआ था और काफी मना करने के बावजूद भी रास्ते के लिए खाना बना ही दिया था। मैंने आते आते भी उन्हें उलाहना देते हुए कहा, तुम भी गजब करती हो, आजकल सब तरह का खाना ट्रेन में उपलब्ध है, तुम बेवजह ही परेशान होती हो। उसने मुस्कुराकर बाय कहा, बैग और टिफिन हाथ में थमा दिया। वैसे आप चाहे जितना धर्मपत्नी के नाम पर जोक बना लें, मगर हकीकत यह है

कि आपसे ज्यादा आपका ख्याल वही रखती हैं और उन्हें पता होता है कि आपको किस चीज की कब आवश्यकता होगी। सो टिफिन में बहुत ही करीने से कच्चे टमाटर की सब्जी, साथ में धनिए हरी मिर्च की तीखी हरी चटनी और उसके साथ शुद्ध घी के पराठे और एक कोने में बूंदी का लड्डू रखा हुआ था। मानो उसे सब पता है कि मुझे क्या क्या पसंद है। सो दोपहर 2 बजे से इस इंदौर लखनऊ ट्रेन के 3rd AC कंपार्टमेंट में बैठे हुए आसपास के लोगों से कुछ बातचीत तो हो ही चुकी थी, अतः औपचारिकता के लिए पास की बर्थ पर बैठे लोगों से खाने के लिए पूछा। पास की बर्थ पर एक युवा दंपत्ति जिनके साथ 4-5 वर्ष की छोटी सी बालिका थी, उन्होंने मुस्कुराकर मना कर दिया। और बच्चे तो आजकल रोटी सब्जी देखकर यूं नाक सिकोड़ते हैं कि पूछिए ही मत। बाकी सब लोगों ने मना कर दिया, हां मगर साथ बैठे एक युवा ने, जिससे एक औपचारिक परिचय तो हो ही चुका था, जो शायद किसी MNC में काम करता था, तो उस युवा ने मुस्कुराकर एक पराठा ले लिया, अतः मुझे उन्हें भी थोड़ी सब्जी देनी पड़ी। और बड़े ही भद्र तरीके से उसने मुझसे पूछा, सर थोड़ी सी हरी चटनी। मैंने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, ये लीजिए हरी चटनी। और वो युवा पहले कौर को खाते ही बड़े उत्साह से कहने लगा, भाई साहब कुछ भी कहिए, घर के खाने की बात ही अलग, कहीं भी ये स्वाद नहीं मिलता, मतलब पेट भर जाए मगर मन नहीं भरता। ये सुनकर मैंने ऐसे ही खाने का डब्बा उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इस बात पर आप एक और ले लीजिए। और वो भाई साहब ने एक और ले लिया। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ मगर फिर भी मुस्कुराकर बात को टाला और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। अब जैसे ही उनका दूसरा पराठा खत्म हुआ, अब की बार उसने बिना कुछ पूछे टिफिन से एक और पराठा ले लिया। मेरे मन में तो आया कि पूछ ही लूं कि भैया जन्म के भूखे हो या आज ही नवरात्र का व्रत तोड़ने का इरादा है, मगर हम इंदौरी थोड़े दिलदार होते हैं तो मन महसूस कर ही रह गया। अमूमन मैं 3 पराठे खाता हूं, स्वाद अच्छा लगे तो 4 भी हो जाते हैं। धर्मपत्नी हर बार कुछ ज्यादा ही रखती है और अक्सर मैं उस पर नाराज हुआ करता था कि ज्यादा खाना क्यों रखना, मगर आज मन ही मन उसे धन्यवाद कहा कि अच्छा हुआ ज्यादा पराठे रखे, वरना मुझे तो भूखे ही रहना पड़ता। तो अब बात कुछ यूं कि 5 में से 3 पराठे वहां भाई साहब उधरस्त कर चुके थे, तो मुझे 2 में ही संतोष करना पड़ा। और जब इतना सब हो ही चुका था तो मैंने सोचा लड्डू भी इन्हीं जनाब को खिला देता हूं। सो मैंने पूछा, कुछ मीठा खाएंगे क्या? मेरे पूछने पर कहने लगा कि ये घर से बने हैं क्या? मैं बोला, नहीं नहीं ये तो लोकल दुकान के हैं। तो बोला, फिर रहने दीजिए, जो चीज बाहर मिल सकती है उसे मैं खाकर क्या करूंगा। कुछ समय बाद रात का वक्त था तो सभी सो चुके थे, बस हम दोनों साइट की बर्थ पर नीचे बैठे हुए थे। तभी ललितपुर स्टेशन आया और सीट नंबर पूछते हुए एक वर्दीधारी वेटर टाइप आदमी वहां पर आया। उसकी वर्दी पर होटल का नाम लिखा हुआ था, शहर का बड़ा 5-स्टार होटल था। उसने उसे सलाम ठोका, कुछ बात हुई और वो एक पार्सल देकर चला गया। उसके जाने के बाद वो युवा मुझसे मुखातिब होकर बोला कि सर मैं जानता हूं आज आप भूखे रह गए, सो ये लीजिए, आप मेरा खाना खा लीजिए, अच्छे होटल का है। मैंने कहा, नहीं नहीं आप लीजिए, मेरा पेट भर चुका है। मगर जब वो कुछ ज्यादा ही जिद करने लगा तो मुझे कुछ सख्त लहजे में कहना पड़ा कि जी नहीं, मैं अजनबियों से यूं

ही कुछ नहीं खाता। मेरी आवाज में एक किस्म की झुंझलाहट थी। मेरी झुंझलाहट को नजरअंदाज करते हुए वो मुस्कुरा कर बोला, सर आप मुझ पर या इस खाने पर शक कर रहे हैं? खैर ये स्वाभाविक है और मैं जानता हूं मैंने आपका टिफिन खा लिया है, इसलिए थोड़ी आपको नाराजगी भी होगी। चलिए मैं आपको असल बात बताता हूं, पर उससे पहले मैं आपका भरोसा जगा देता हूं। फिर उसने मुझे अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एमएनसी कंपनी का आई कार्ड दिखाया। वो काफी सीनियर पोस्ट पर था और कहने लगा, सर अब सुनिए मेरी दास्तान। मैं हूं आईआईटी मुंबई से 2015 का पास आउट, एक सॉफ्टवेयर एमएनसी में कार्यरत हूं। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, किसी चीज की कोई कमी नहीं। कहीं भी आने जाने के लिए कंपनी की तरफ से फ्लाइट या प्राइवेट टैक्सी मिलती है, मगर मैं हर बार ट्रेन का ही टिकट लेता हूं। जानते हैं क्यों? बस इस खाने के लिए, या यूं कहूं इस घर के खाने के लिए जो आज मैंने जबरदस्ती आपके टिफिन से खा लिया है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा उत्सुक हो उठा और मैंने पूछा, ऐसा क्यों? तो फिर उसने मुझे अपने पिता की आर्मी ड्यूटी, मां के बचपन में देहांत के बारे में बताया। बोला कि पिता की ड्यूटी अलग अलग शहरों में लगती थी, इसलिए मुझे बचपन से ही हॉस्टल में डाल दिया गया। तो जीवन में सब हासिल हुआ, बस घर का खाना ना मिला। बचपन में पिता का रुतबा और अब उसकी खुद का यह पद। वो जिस किसी के भी घर गया, हर किसी ने उसे खास की तरह ट्रीट किया। भोजन में उसे सादा खाना नहीं, हमेशा महंगे पकवान ही मिले। तो सर जीवन का वो कोना, या यूं कहिए मन, कभी तृप्त ना हुआ, हमेशा भूखा ही रहा। और ये वही भूख है जो अक्सर मुझे ट्रेन में सफर करवाती है और जिसकी वजह से मैं ऐसे ही आप किसी के हिस्से का टिफिन खा जाता हूं। सुनकर मुझे अनोखा और अजीब सा लगा, मगर ये सब बताते वक्त उसकी आंखों में जो पानी था वो सच्चा था। मैं मुस्कुरा कर रह गया और बस इतना ही कह पाया कि या रब तेरी कायनात में क्या क्या ना देखने को मिला, जो हासिल मुझे सहूलियत से वो भी ख्वाब सा किसी की आंख में मिला।

साहित्यिकी के अंतर्गत आप सुन रहे थे नितिन राठौर की कहानी एक यात्रा ऐसी भी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को पद्मश्री तपस्वी का नमस्कार। श्रोताओं, आने वाले रविवार को यानी 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इस समय चल रहा है योग सप्ताह, जो 15 जून से शुरू हो गया है। इस योग सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों के जीवन में योग का क्या महत्व है उसे उजागर करना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और आम जनता को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, इस पूरे योग सप्ताह जागरूकता अभियान के तहत योग के फायदे बताने के लिए चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं भी की जा रही हैं। विभिन्न आयु वर्ग के लिए विशेष स्वास्थ्य और योग शिविर भी लगाए जा रहे हैं और सामूहिक योगाभ्यास विभिन्न योग संस्थाओं के द्वारा पार्कों और स्टेडियम में किए जा रहे हैं। इन सामूहिक प्रयासों से हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे कि जीवन में योग कितना जरूरी है।

श्रोताओं, क्या आप जानते हैं 21 जून ये तारीख अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए क्यों चुनी गई? तो इसका मुख्य कारण है, 21 जून उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है, तो इस तरह से ये तारीख तय की गई। इस साल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग, और इस वर्ष का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।

श्रोताओं, आपको बता दें 27 सितंबर सन 2014 को सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर अपने भाषण में पूरे विश्व से अपील की थी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। ये केवल व्यायाम नहीं बल्कि अपने भीतर एकता की भावना जागृत करता है और हमारी बदलती जीवन शैली में ये चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। उनके इस प्रस्ताव को मानकर 11 दिसंबर 2014 को 177 देशों के सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई।

श्रोताओं, अब सवाल ये है कि योग क्यों करना जरूरी है? तो योग करने से मानसिक शांति मिलती है, तनाव से राहत भी योग ही देता है। शरीर लचीला, संतुलन और मांसपेशियों में ताकत बढ़ती है। योग के साथ अगर प्राणायाम भी किया जाए तो ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ फेफड़ों की कार्यक्षमता भी बढ़ती है। रोज योग करने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, वजन भी घटता है। रात को गहरी और अच्छी नींद के लिए भी योग जरूरी है। इसलिए योग करें और स्वस्थ रहें।

0: कार्यक्रम के आखिर में यही कहेंगे, कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। ये जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, ये जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा। कार्यक्रम से दीजिए अनुमति पद्मश्री को, नमस्कार।
1: सुनहरे पल।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेचक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
5: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
6: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
4: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
7: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
4: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकास

0: विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
2: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
4: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
5: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
3: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
6: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से

0: शुरुआत के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है, सबसे धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
3: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद सिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
4: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती।

यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 5 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रवीण कुमार झा और दमोह से किशन घीवाला। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय स्वाधीनता इतिहास में ऐसे अनगिनत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जिया, जिन्होंने सेवा को साधना माना तथा राष्ट्र प्रेम को जीवन का सर्वोच्च धर्म। उन्होंने स्वतंत्रता को केवल स्वप्न नहीं माना, बल्कि गांवों जंगलों में घूम घूम कर उसे जन जन का विश्वास, संघर्ष और संकल्प बना दिया। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र को समर्पित करने वाले ऐसे ही महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे लक्ष्मण प्रसाद दुबे। वो एक दूरदर्शी शिक्षाविद और समाज सुधारक भी थे। चूंकि उनका पूरा जीवन एक शिक्षक के रूप में बीता और अपने इस कर्तव्य को उन्होंने एक साधना माना, इसलिए वो आम जन में गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मण प्रसाद दुबे का जन्म 9 जून 1909 को दुर्ग जिले में हुआ था। ये वो समय था जब देश में राष्ट्रवाद की लहरें हिलोरें ले रही थीं। सन 1905 में बंग भंग आंदोलन की आंच से पूरा देश सुलग रहा था। ऐसे वातावरण में लक्ष्मण प्रसाद दुबे का बचपन बीत रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर ही आरंभ हुई और शिक्षा के साथ साथ वो समाज की विषमताओं को भी देख रहे थे। शोषण और पराधीनता के प्रभाव से वो अत्यंत आहत हो जाया करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही उनके भीतर अध्ययन के साथ साथ सामाजिक सरोकारों के प्रति गहरी रुचि थी। यही कारण है कि वो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज और राष्ट्र की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते रहे। फिर वो समय आया कि जब देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन नई दिशा प्राप्त कर रहा था। स्वदेशी और सत्याग्रह के विचार लोगों को आकर्षित कर रहे थे। लक्ष्मण प्रसाद दुबे भी इस राष्ट्रीय चेतना से अछूते नहीं रहे। उनके मन में देश की स्वतंत्रता और समाज के उत्थान का भाव निरंतर प्रबल होता गया।

अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। वो अध्यापन का कार्य तो करते ही थे, इसके साथ ही उन्होंने अनेक युवाओं को राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित किया। भिलाई में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उनका संपर्क जिले के वरिष्ठ सत्याग्रही नरसिंह प्रसाद अग्रवाल से हुआ। अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में उन्होंने मद्य निषेध आंदोलन चलाया, स्वदेशी का संकल्प लिया तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं के साथ साथ उन्होंने जॉर्ज पंचम का चित्र भी जलाया। 1930 का दशक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय था, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। इसी समय लक्ष्मण प्रसाद दुबे सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। वो अब राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। वो जनसंपर्क, संगठन निर्माण के साथ ही लोगों के भीतर राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम करने लगे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत शांत, सरल और कर्मठ था। वो मानते थे कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि समाज में जागृति और आत्मसम्मान का संचार भी है। यही कारण है कि वो शिक्षा पर अत्यधिक बल देते थे। वो विशेष रूप से नारी शिक्षा और नारी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। क्योंकि यहां कोई समुद्र तट नहीं था, इसलिए सविनय अवज्ञा की भावना से जुड़ते हुए ब्रिटिश शासन के अन्य दमनकारी कानूनों को चुनौती दी गई। मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह आंदोलन का प्रमुख रूप बन गया। वन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, जनजातीय समाज के लोगों और ग्रामीणों पर अंग्रेजों ने जंगलों में चराई, लकड़ी, घास और वन उपज लेने पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। इसलिए सत्याग्रहियों ने इन कानूनों का उल्लंघन करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ का पोड़ी जंगल सत्याग्रह 1930 के जंगल सत्याग्रहों में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। छत्तीसगढ़ में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वन कानूनों के विरोध में किया गया था। धमतरी के पास स्थित बालोद के ग्राम पोड़ी में हुए जंगल सत्याग्रह का आरंभ जुलाई 1930 में हुआ, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया। लक्ष्मण प्रसाद दुबे चूंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे, इसलिए जाहिर तौर पर वो इसमें सघन रूप से सक्रिय हुए। सत्याग्रहियों ने आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश किया, घास और लकड़ी एकत्र की, पशुओं को प्रतिबंधित क्षेत्रों में चराया। इस तरह वन कानूनों का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। पोड़ी सत्याग्रह की पूरी रूपरेखा तथा दस्तावेजी काम अग्रवाल जी ने लक्ष्मण प्रसाद दुबे को सौंप दिया था। सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उन्होंने गुप्त रूप से संरक्षित रखा और उसका पूरा लेखा जोखा एक रजिस्टर में दर्ज कर उसे संकलित किया। सत्याग्रह की इन सभाओं में महिलाएं भी आती थीं, जो चरखा लेकर आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती थीं।

लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो लोगों के बीच जाकर उन्हें देश की स्थिति से अवगत कराते, स्वाधीनता आंदोलन के उद्देश्य को समझाते और राष्ट्रहित में लोगों को संगठित होने का संदेश देते। उनका मानना था कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल नेताओं का नहीं बल्कि जन सामान्य का संघर्ष है। सन 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया तब पूरा देश नई ऊर्जा से भर उठा और एक निर्णायक लड़ाई आरंभ हुई। इस समय भी लक्ष्मण प्रसाद दुबे छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे। वो स्वाधीनता आंदोलन और जंगल सत्याग्रह में पूरी तरह से जुटे हुए थे। उनकी गतिविधियों पर अंग्रेजी शासन की नजर रहने लगी, लेकिन नरसिंह प्रसाद अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद भी वो रुके नहीं, वो आंदोलन को हवा देते रहे। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसाद दुबे को गिरफ्तार करने का आदेश जारी हुआ। उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और भूमिगत हो गए और वन्य क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की लौ जलाते रहे। सन 1942 से 1947 तक वो दुर्ग, रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय रहे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी वो चुप नहीं बैठे। वो लगातार समाज सेवा के मार्ग पर चलते रहे। उनके लिए स्वाधीनता का अर्थ केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं था, वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां शिक्षा, जागरूकता और मानवीय मूल्यों का विकास हो। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही उन्होंने शिक्षा के महत्व को बहुत गहराई से समझ लिया था। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास शिक्षित और जागरूक नागरिकों के माध्यम से ही संभव है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने किसी भी पद का लालच नहीं किया। आजादी के बाद उनका पूरा ध्यान सामाजिक जागरण और शिक्षा पर ही केंद्रित रहा। लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के प्रसार और विद्यालयों की स्थापना की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो मात्र एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी नहीं थे बल्कि वो ग्रामीण शिक्षा जागरण के अग्रदूत भी थे। गुरुजी के रूप में उन्होंने गांव-गांव में शिक्षा की अलख जगाई, अनेक युवाओं को अध्यापन कार्य से जोड़ा और ग्रामीण अंचलों में विद्यालयीन शिक्षा के विस्तार की दिशा में मजबूत नींव रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की आजादी, भारत का उत्थान, भारत की विजय ही उनके जीवन का अनंतिम लक्ष्य था। निस्वार्थ भाव से आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 23 जुलाई सन 1993 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्र सेवी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: नशोर दिन रात, नशोर दिन रात,
2: नशोर दिन
1: ना ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं स्वाति उखले और साथी के गाए मालवी लोकगीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं गणेश वंदना।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत। कलाकार हैं स्वाति उखले और साथी। इनके गाए मालवी लोकगीत आप सुन रहे हैं।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे स्वाति उखले और साथी के गाए मालवी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं वैशाली बकोरे की गाई कुछ रचनाएं। सबसे पहली रचना सुनते हैं, ये है भजन।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं वैशाली बकोरे। इन्हीं के स्वर में सुनते हैं एक और भजन।

ब्रह्मानंद की रचना आप सुन रहे थे, स्वर था वैशाली बकोरे का। इन्हीं के स्वर में आइए अब सुनते हैं एक गीत।

सुगम संगीत में आप सुन रहे थे वैशाली बकोरे की गाई कुछ रचनाएं। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं पंडित सतीश व्यास का संतूर पर बजाया राग मियां मल्हार। तबले पर आपके साथ हैं मुकेश जाधव।

0: शास्त्रीय संगीत में आप सुन रहे थे पंडित सतीश व्यास का संतूर पर बजाया राग मियां मल्हार। तबले पर आपके साथ थे मुकेश जाधव।
1: ओहो, क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अभी कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह आप और हम हुए एक साथ, तो सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है जिले की चिट्ठी, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी, वाचन स्वर शरद बाघेला। सतना जिले में भी इन दिनों प्री मानसून गतिविधियों का दौर है। तेज हवा के साथ कहीं कहीं बारिश होने से तापमान में कमी आई है। जिले में अतिवर्षा और बाढ़ आपदा स्थिति में आवश्यक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07672223211 यानी 07672223211 है। कंट्रोल रूम के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम के लिए प्रभारी अधिकारी राहत शाखा और डिप्टी कलेक्टर लक्ष्य राम जांगड़े को बनाया गया है, जिनका नंबर 9993754244 यानी 999-3754244 है। सतना जिले में खरीफ फसलों की बोनी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए जिले में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उपसंचालक किसान कल्याण कृषि ने बताया कि वर्तमान में सतना और मैहर जिलों में यूरिया, DAP, NPK और SSP सहित विभिन्न उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने गत माह स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद गणेश सिंह उपस्थित रहे। विगत दिनों प्रदेश की पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और मैहर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने मैहर जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट भवन के पास 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नवीन जिला पंचायत के भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला पंचायत भवन को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ तैयार किया जाए। प्रदेश की नगरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के अरेगांव विधानसभा क्षेत्र में 11 से 15 जून तक सघन भ्रमण एवं जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। रेगांव मंडल के प्रवास के दौरान राज्य मंत्री ने जनसंपर्क, जनसुनवाई और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए क्षेत्रवासियों को 213 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें दी। कार्यक्रम के तहत उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक वृक्षारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। जिले के जवाहर नगर स्थित दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम में स्विमिंग पूल सहित शेष बचे निर्माण कार्यों का शुभारंभ सांसद गणेश सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि ये स्विमिंग पूल युवाओं में तैराकी के प्रति रुचि बढ़ाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

सतना और मैहर जिले में 12 से 18 जून तक नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में क्षेत्रीय नागरिकों की समस्याओं के निराकरण और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। सतना जिले में वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी जल संसाधनों में 16 जून से 15 अगस्त तक क्लोज सीजन घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान सभी प्रकार की मछली पकड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सतना जिले में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सभी स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। समय समय पर टीकाकरण कराए जा रहे हैं। सतना और मैहर जिले में किसानों के कल्याण के लिए कृषि और संबंधित विभाग के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए 10 दिवसीय कृषि रथ का शुभारंभ किया गया। ये कृषि रथ जिले के प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत निर्धारित सभी ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा है। सतना जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जल संरक्षण और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए व्यापक स्तर पर गतिविधियां आयोजित की गई। इसी तारतम्य में शहर के प्रसिद्ध जगत देव तालाब में जिला पंचायत और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तालाब सफाई के लिए संकल्प लेकर सफाई कार्य शुरू किया। सतना जिले के मझगवां विकासखंड अंतर्गत नकेला में क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां के संयुक्त तत्वावधान में किसानों को औषधि पौधों की उन्नत खेती प्रसंस्करण और उपयोग विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। और सतना जिले में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्चों को दवा पिलाएगी। सतना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सतना जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को पद्मश्री तपस्वी का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आशा फिल्म के इस गीत से। लता मंगेशकर की आवाज है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और सुनने की फरमाइश आप सभी ने की है। संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, रजिया जिया उल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर। मालेगांव से दत्ता घायाळ, सुनीता बाई, सानिका गजानन। जूनापानी सनावत से कालूसी बडोले, सीताराम हीरा लाल बडोले, तेर सिंह डावर, साहिल हरिओम, विशाल सुमन, रमा कंचन, भावना। मोरटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम, ज्योति ललित, मनीषा शुभम, देवी किशन, भावना और कनिका। खमरिया बिलासपुर से धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार, सावित्री देवी, साबित खान। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार, मोहम्मद आशिफ। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। धाड़ी नादूरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप अमूल्य, वैशाली बाठे। इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है। अमरावती महाराष्ट्र से नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामचरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांत। प्रमिलागंज आलोट से राजूबाई, मायाबाई वर्मा, शोभा वर्मा, ज्योति मांगीबाई, मंगला राठौर। सोमानी नगर इंदौर से बी आर नामदेव, राजेश्री रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज, स्वाति, टोनी, निधि। खंडवा रोड सनावत से अबरार भाई, इमरान, इरफान, वसीम, सोनू, सईदा बी, आयशा, सुल्ताना। आप सभी ने पसंद किया है आशा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मन भवन कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, नौशाद का संगीत, और पसंद किया है आप सभी ने। धर्मपुरी जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद, शेख तस्लीम, मुजफ्फ़र, अयान, फैज़ान, हसनैन, सुमेरा, साइमा और खुशी। ग्राम थापना से ज्योति भदौरिया, उदयराज सिंह भदौरिया, प्रमीलागंज आलोट से बलवंत कुमार वर्मा, मूसाखेड़ी इंदौर से सुनीता सेन, रवि, कृष्णा, पंचशील कॉलोनी, डुग्गू सेन, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया, बेडी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची, तनु, अटल चौराहा इंदौर से सुरेश मंगवानी, लक्ष्मी, शोभा, निर्मल, ज्योति, नेहा, गोपाल, राहुल मंगवानी, हेमंत और समस्त परिवार। द्वारकापुरी इंदौर से राजेंद्र शर्मा, भावना, जयदीप, अर्पिता, हिमांशु, ओशिन, अद्विका, निशिता और हेमंत। नागदा जंक्शन जिला उज्जैन से हीरा लाल, खेराजानी, पुष्पा और गौरव। ब्रह्मपुरी कॉलोनी इंदौर से दिनेश हार्डिया, ज्योति, अंजू, वर्षा, रानी, दिव्यराज हार्डिया और समस्त साथी। आप सभी ने पसंद किया है दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। गीत के बोल हैं शकील बदायूनी के, नौशाद का संगीत।

0: विता, संजय, नंदिनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज, भैयू दादा, अजय, अनाया, ईशु बाबा और पेंटर बाबू, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि राजेश और शीतल राजेश, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ईशिका और तेजल, छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकी, सन्नी और कोमल, आप सभी ने पसंद किया है मन चली फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी?
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम हम हैं राही प्यार के। कुमार सानू अलका यादनी की आवाज़ है, गीत लिखा है समीर ने, नदीम श्रवण का संगीत और पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सभी। लाबरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन और समस्त बन बामनिया परिवार। नांदखेड़ जिला वाशिम से अशोक चुंबले, दिनेश चुंबले, रूपेश लीलाबाई, चैताली और प्रीति चांदणे। इंदौर से अनिल कौचाले, सबीहा, सुषमा, सीमा, स्मिता, श्वेता, पूजा, राखी और मीनू। ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार, विशाल, शीला, गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा, नीतू। दरियापुर बाभली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप। शेरी वर्डनेर अकोला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर। पालदाना का इंदौर से हसीना भी मंसूरी, अमीना भी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े, आरती। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार। सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, प्रभा कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव और काव्यांशी। इसी गीत को सुनना चाहा है शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लभी श्रीवास्तव। आप सभी की पसंद से अब आपको सुनवा रहे हैं हम हैं राही प्यार के इस फिल्म का गीत, कुमार सानू अलका यादनी की आवाज़। गीत लिखा है समीर ने, नदीम श्रवण का संगीत।

मन भवन कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है शक्ति, महेंद्र कपूर की आवाज है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, आर डी बर्मन का संगीत। और पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सभी, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, वंदना नगर इंदौर से रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गांव भड़बुंजी आगर से रघुनाथ मालवीय, मंजू, बबीता, राधा, आयुष और ओम प्रकाश, करनाल से सुधीर, सुनीता, नूतन, साधना, मीनाक्षी तिवारी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, इसी गीत को पसंद किया है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत प्रणीता और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैल।

देश गवाड़कर, श्वेता, सुमित, कुमारी ध्वनि और परी। सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता, मुस्कान मालाकार। लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वही वली उल्लाह फकीर, डब्बू उल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर। बुलंदशहर से बरूद अली अंसूरी, करजू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी और समस्त साथी। आप सभी ने पसंद किया है शक्ति फिल्म का गीत। महेंद्र कपूर की आवाज़ है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, आर डी बर्मन का संगीत।

आनंद मिलिंद का संगीत है, गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर, और फिल्म का नाम है संगीत। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने बीड शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप और केशव पटेल, निहालपुरा इंदौर से अनीता कोमल, सोनू मोनू, दुर्गा दीपक, कपिल और प्रदीप, मक्सी से दयाराम जाटव, चेंसी आरोल, नानू राम कासोटिया, नंदकिशोर, दीपक और छगन लाल वर्मा, राजापेट अमरावती से दिलीप लकड़े, सुरेखा सारंग, शुभम विराज मोहिते, हाथीगेट राजपुर से संतोष पाटिल, लाड़की पाटिल, भाग्यश्री, संजू, नेहा वाघ, पार्थ वाघ, बरखा तिरोले, सानवी तिरोले, राजपुर से किसु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, चांदनी नाज। गौरीनगर इंदौर से इस गीत को सुनने की फरमाइश की है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा। आप सभी ने पसंद किया है संगीत, फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर की आवाज़, गीत लिखा है संतोष आनंद ने, आनंद मिलिंद का संगीत।

मन भावन कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम मेरे महबूब, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, नौशाद का संगीत और पसंद किया है आप सभी ने। सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान, शकीला बानो, रुखसार बानो, मोहम्मद आरिश। हिंगोली से रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टीकू रमाबाई, सुरेंद्र मयूरी, सुरभि मंजूषा, गौतम इंगोले। अशोकनगर बसमत महाराष्ट्र से पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके। झुमरी तलैया से देव इंगोले, छकुली इंगोले, छोटू दादा इंगोले और आर डी इंगोले। मोहद बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक परवेज, बिटिया रोजमीन, तैमूर और भैया। कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबैद रजिया, जुनेदा अलीना, नसरी जहां, आयत मुआज मंसूरी। पुणे से प्रियंका आर, पंकज बाड़ोदे, वीटी बाड़ोदे। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता छोटू, पूजा रोशनी, अजय। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश।

मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक नियाज जी, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोड़कर, ग्राम बगबुड़वा फतरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, बनियापारा छत्तीसगढ़ धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर सविता, स्वाति, पूजा, छुटकी शरद और समस्त परिवार। महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, आप सभी ने पसंद किया है मेरे महबूब फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़।

मेरे महबूब फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने, नौशाद का संगीत था। इस गीत के साथ ही मन भावन कार्यक्रम से अनुमति दें पद्मश्री तपस्वी को। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच का ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम किसी खास विषय पर बात करेंगे। वैसे वो विषय हम सभी के लिए बहुत ही खास है। पानी की कमी को हम कैसे रोक सकते हैं? आने वाली स्थिति, बारिश नहीं होने की स्थिति में या बारिश कम होने की स्थिति में पानी का बचाव हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है ये हम सभी जानते हैं। तो आइए आज हम इस विषय पर बात करेंगे और सुनेंगे सुमधुर गीत। तो कीजिए कॉल 2660902 पर और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हमें इंतज़ार है आपके फ़ोन कॉल्स का। हेलो, नमस्ते जी, कौन बोल रही हैं?
2: जानकी गुप्ता बोल रहे हैं, ग्राम भगवंत नगर से।
1: कौन बोल रहे हैं?
2: जानकी गुप्ता।
1: जानकी गुप्ता बोल रही हैं जी, कहाँ से?
2: ग्राम भगवंत नगर।
1: अच्छा, और जानकी जी, भगवंत नगर ये कहाँ पड़ता है?
2: ये है टीकमगढ़ जिला में है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: तहसील कलेरा।
1: आपने शायद पहली बार कॉल किया है ना?
2: कॉल अभी 3 तारीख को की थी, कॉल 7 तारीख।
1: नहीं मतलब बहुत, मेरी तो शायद आपसे पहली बार बात हो रही है जानकी जी।
2: आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं कविता रावत बोल रही हूँ।
2: हाँ, पहली बार हो गया
1: है ना। चलिए और सुनाइए, क्या हाल है आपके?
2: सब बढ़िया है मैम, खाना बना गए।
1: हाँ,
2: साफ कर रहे थे, फोन लगा रहे थे, फिर लग गया।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। और जानकी जी, आपके यहाँ जो पानी है उसकी हाँ, कोई कमी तो नहीं है? भरपूर मात्रा में मिलता है आपको पानी?
2: एक तो ये नहर वीहर आती है सिंचाई के लिए।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, और जो बैसा कुगा उगा भी है यहाँ पर।
1: मतलब अच्छी तो व्यवस्था है जल की,
2: घर में बोर है।
1: चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपसे एक बात पूछनी है कि आप है ना पानी की बर्बादी करने से बच्चों को या रोकती हैं या बहने देती हैं काफी हद तक पानी?
2: अरे मैम, हमारे यहाँ जो हमारा घर है ना,
1: हाँ,
2: हमारे बिल्कुल भी पानी बर्बाद नहीं करते हम लोग।
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि है ना कई जगह पर पानी की बहुत समस्या हो रही है। और अभी हम देख रहे हैं कि जून आधा निकल चुका है लेकिन मानसून अभी पूरी तरह से हमारे यहाँ नहीं आया है।
2: हाँ मैम,
1: है ना।
2: तो हम जो हमारे यहाँ पानी है ना, और हमारे नल में थोड़ा कम पानी है, इसलिए हम और किसी के घर से पानी की वो करें व्यवस्था। तो हमारे यहाँ तो देखो पानी बर्बाद हम करते ही नहीं, कभी नहीं करते। पहले नल से लिया तो नहीं करते, अब घर पानी आता तो नहीं करते।
1: बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि है ना यदि हमें भरपूर पानी मिल भी रहा है लेकिन हमें सब लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पानी की बर्बादी रोकना चाहिए। और ये हम सभी कर
2: गांव में।
1: हाँ हाँ,
2: पानी की जाना, पानी की मात्रा है तो बहुत बार बार

0: हम तो कई बार रोकते हैं भैया इतना पानी ना फैलाओ तुम लोग।
1: बिल्कुल सही बात है। जहां भी आप देखें कि कोई पानी की बर्बादी कर रहा है तो बेझिझक होकर उसको रोकिए।
0: रोक दें मैम।
1: जी चलिए जानकी जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कॉल करने के
0: थैंक
1: लिए
0: यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते,
1: नमस्ते दीदी। कौन आप बोल रहे हैं?
0: मैं कविता दीदी बोल रही हूँ।
1: अच्छा,
0: आप
1: बात
0: कौन बोल
1: इसको
0: रहे हैं?
1: मैं सपना से रमेश कोटवानी, सपना
0: कौन बोल रहे हैं?
1: से रमेश कोटवानी।
0: रमेश कोटवानी?
1: हाँ
0: कहाँ से? जी रमेश कोटवानी जी बोलिए।
1: हाँ तो आज कौन से हेलो वो वाला चल रहा?
0: आज हमारा प्रोग्राम है बात आपकी गीत हमारे।
1: जी तो समाधि फिल्म का गाना सुनना है।
0: बिल्कुल, हम आपको गीत तो सुनवाएंगे लेकिन आज के प्रोग्राम में हमारी पसंद के गीत होते हैं, बातें आपकी होती हैं। और आज की जो बात हमने रखी है उसका विषय है कि जल को कैसे संरक्षित करें, कैसे बचाव करें, हम पानी की बर्बादी को कैसे रोकें।
1: जल को तो देखिए दीदी, चाहे वो नाली हो चाहे नर्मदा हो, सबको रोक के चलना चाहिए। पानी तो हर चीज का काम आता है, चाहे गंदा भी हो, भी गमलों में काम आ जाएगा,
0: बिल्कुल सही बात है, लेकिन
1: हर
0: यही
1: चीज में काम
0: बातें
1: आता
0: हम हर जन जन तक पहुंचानी है कि कैसे पानी की बर्बादी को रोकें और
1: है। नहीं
0: वेस्टेज
1: नहीं
0: पानी है उसका क्या उपयोग करें।
1: नहीं दीदी, ये तो जरूरी है। नहीं, ये तो आदमी को शुरू से करना चाहिए, नहीं तो ये तो आगे चल के भविष्य में बहुत दिक्कत होगी।
0: बिल्कुल सही बात है, और ये जो आने वाली दिक्कतों को कि हमारे बच्चों को वो दिक्कतें ना हो, यही सोचकर यदि हम सभी थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो
1: नहीं,
0: पानी को बचा सकते हैं,
1: जरूरी है दीदी, ये तो बहुत
0: है ना?
1: जरूरी है।
0: क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से कितनी मानसून कितना रूठा हुआ है हम सभी से।
1: अभी देखिए इतनी गर्मी इसलिए भी पड़ती है कि
0: गर्मी,
1: हमें
0: हाँ, हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है टेम्परेचर।
1: सीमेंटिक रोड बन रही,
0: बिल्कुल सही बात है,
1: वो पानी अब बहे तो जाए कहाँ से,
0: बिल्कुल
1: सीमेंट
0: बिल्कुल।
1: है इधर उधर चला जाता है,
0: बिल्कुल। तो जब भी
1: तो
0: बारिश भी हो
1: पूरी
0: तो
1: मत
0: उसके लिए
1: कीजिए।
0: भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कुछ गड्ढे हमारे जहाँ खेत वेत हैं वहाँ करके रखें कि वो जमीन के अंदर पानी बैठ सके, है
1: औद्योगिक
0: ना?
1: क्षेत्र देखिए इतने खुले हैं, मशीनों पूरी 24 घंटा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रमेश जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कल 11 बजे अपना प्रोग्राम सुनिएगा, और अभी के लिए आपसे इतनी ही बातचीत।

0: हेलो
1: हेलो, आप आसवानी
0: जी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश
1: आप अच्छे हैं? आप
0: जी। हम बहुत अच्छे हैं, आप अपना शुभ नाम बताइए।
1: मेरा नाम सागर सिंह कुशवाहा है।
0: सागर सिंह कुशवाहा, कहाँ
1: हाँ जी,
0: से?
1: बसई नवाब धौलपुर,
0: जबलपुर,
1: बसई नवाब धौलपुर।
0: धौलपुर
1: हाँ जी,
0: जी। और कब कॉल किया था आपने? आज तो हमारी शायद आपसे पहली बार बात हो रही है।
1: हाँ जी।
0: इसके पहले कब कॉल किया आपने आकाशवाणी में?
1: फोन लगता है नहीं है तुम्हारा?
0: लेकिन आज लग गया ना।
1: आज लग गया, बहुत खुशी हुई है।
0: चलिए सागर जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं राजमिस्त्री हूँ।
0: अच्छा। और अब हम जिस विषय पे आज बात कर रहे हैं, वो बात करने में आपको तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप तो सागर हैं और हम बात कर रहे हैं जल की।
1: आओ, बोल बताइए।
0: तो बताइए, जल को कैसे बचाया जाए, पानी की बर्बादी कैसे रोकी जाए?
1: एक तो ऐसा है, पानी खर्च कम करो। उसकी जहां तक लगे एक बाल्टी फैला देना, आधी बाल्टी कोशिश करो पानी फैलाने की।
0: बिल्कुल सही बात है। मान लो अपने खूब नल आता है।

0: है, खूब पानी आता है, उसके बावजूद हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि बाकी लोगों के पास उतना नहीं पहुंच रहा है।
1: फालतू नल को मन चलाओ, पानी की जरूरत है उतना ही खर्च करो।
0: बिल्कुल सही बात है। यदि हम अपनी गाड़ियों को धोते हैं तो डायरेक्ट पाइप से ना धो के बाल्टी से मग्गे का इस्तेमाल करें तो पानी की कम बर्बादी होगी, और जो
1: होगी साहब,
0: हमारे दाल चावल धोने का पानी है यदि वो गमलों में डाला जाए तो उससे भी हमारी पानी की काफ़ी बचत होगी। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यदि हम सभी उसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी को पानी की दिक्कत नहीं होगी।
1: जैसे पहले कुएं पे पानी निकालते,
0: जी
1: एक बाल्टी के काम निकाल लेते, अब हमारा तो उसको टैप चालू कर देंगे, चल रहा है काफी, एक
0: वही,
1: घंटा आधा
0: बहुत
1: घंटा।
0: जगह ऐसा देखा है कि पानी की बर्बादी काफी होती है, तो हम तो यही चाहते हैं अपनी सभी श्रोताओं के माध्यम से सब लोगों तक यही जागरूकता फैले कि पानी की बर्बादी को रोका जाए,
1: रोका जाए
0: है ना। चलिए सागर जी,
1: बिल्कुल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। कुछ और कहना चाहते हैं?
1: अब गाना सुनना है,
0: गाना तो आप बिल्कुल सुनेंगे, हम अपनी पसंद का गाना सुनवाएंगे, और कल 11 बजे से आप अपना कार्यक्रम सुन सकते हैं, हमारी बीच हुई बातचीत भी आप सुन सकेंगे, ठीक है।
1: ठीक है जी,
0: चलिए धन्यवाद।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी।
1: हम भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज बासोदा, जिला विदिशा।
0: भारचंद साहू,
1: बिल्कुल दीदी, आपके नियमित श्रोता।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और
1: और
0: क्या
1: सारे
0: हाल है
1: कार्यक्रम
0: आपके?
1: हैं बहुत बढ़िया है दीदी, आप कैसी
0: हम
1: हैं?
0: भी बहुत अच्छे हैं। और बारिश
1: बिल्कुल।
0: वारिश तो अभी गायब सी है।
1: हाँ, गायब तो है फिलहाल में, कल तो पानी गिरा है गंज वासुदेव में।
0: हाँ, यहाँ भोपाल में भी गिरा था, लेकिन बहुत कम। जो कहते हैं ना कि मानसून आ गया है, वो अभी ऐसे हालात दिख नहीं रहे।
1: नहीं, वो अभी 5% दिख रहा था माहौल,
0: वही।
1: ऐसा नहीं दिख रहा था।
0: तो आज हमारा विषय यही है कि जल की बर्बादी हम कैसे रोकें, क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, वक्त बीतता जा रहा है, पानी
1: बिल्कुल
0: की
1: बिल्कुल
0: कमी होती जा रही
1: बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत
0: है
1: अच्छा
0: ना?
1: अच्छा फिर इसने बिल्कुल।
0: तो बताइए ना, आप कैसे पानी की बर्बादी को रोकते हैं?
1: दीदी पानी तो ऐसा है, देखो बेफजूल का पानी बिल्कुल नहीं बहाना चाहिए। है क्या है, जैसे पानी आपका है पर्याप्त, आपके पास है
0: जी
1: तो या गड्ढा मड्ढा वगैरह बना लो या कुछ बना लो, उसको रोक के रखे पानी के लिए,
0: बिल्कुल सही
1: ये
0: कह
1: अपने
0: रहे हैं।
1: लिए आगे के चल के अपने लिए काम आए वो पानी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बिल्कुल रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना पानी बगैर कुछ नहीं हो सकता।
0: और आज हमें पानी है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ये दिक्कतें और बढ़ जाएंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, पेड़ पौधे कट चुके
0: वही।
1: हैं तो उनकी वजह से पानी की मात्रा कम हो रही है, पानी गिर नहीं रहा सही तरीके से।
0: बिल्कुल।
1: बिल्कुल पानी बिल्कुल भी नहीं गिर रहा सही तरीके से, हम
0: तो
1: व्यर्थ कर
0: इसीलिए
1: चुके हैं।
0: हम सभी का कर्तव्य बन जाता है कि कहीं भी यदि पानी की बर्बादी होते देखें तो उसे
1: बिल्कुल
0: रोकें, और स्वयं भी बहुत कम से कम मात्रा में पानी को खर्च करें।
1: बिल्कुल। और दीदी एक बात और कहना चाहते हैं हम रेडियो के
0: बताइए।
1: माध्यम से,
0: हाँ
1: कि
0: जी।
1: आजकल जो स्कूल के खुलने वाले हैं बच्चों के, ज्यादातर
0: हाँ।
1: हमें देखने में एक आया है कि आजकल बच्चे टच मोबाइल में ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं।
0: वो तो सही बात है।
1: क्या है, ये गलत है, ये माता पिता का फर्ज है कि उन्हें देखें क्या देख रहे हैं, पढ़ाई
0: बिल्कुल
1: कर रहे
0: सही
1: हैं कि
0: बात
1: नहीं कर
0: है।
1: रहे हैं जी, बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उनकी लाजें देखते हैं आए
0: बिल्कुल
1: भाई,
0: बिल्कुल
1: लापरवाही बिल्कुल ना बरतें बच्चों के साथ।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हम जो अपने विषय से अब ना हटें, तो पानी की बर्बादी को रोकने का पूरा प्रयास आप सब भी करें।
1: और दीदी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पत्र शामिल नहीं हो रहे हैं आजकल
0: अभी
1: आकाशवाणी से
0: आजकल
1: भोपाल में।
0: अभी होगा, आपका पत्र भी शामिल होगा। बहुत सारे लोग रहते हैं तो सबका नंबर आते आते थोड़ा टाइम लगता है।
1: हाँ वो
0: चलिए,
1: आपकी
0: कॉल करने के
1: बात
0: लिए धन्यवाद। हमारे अगले श्रोता लाइन में लगे हुए हैं। ठीक
1: बिल्कुल
0: है
1: दीदी,
0: भारचंद्र जी, थैंक
1: बिल्कुल
0: थैंक यू,
1: मैं
0: थैंक यू
1: दीदी,
0: वेरी मच।
1: नमस्ते नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं धार जिले के से रवि सिंह बोल रहा हूँ,
0: रवि,
1: रवि वर्मा।
0: रवि वर्मा, धार जिले से। और रवि जी, क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं किसान भी हूँ और हमारे पास में इंडस्ट्रियल एरिया है पिथमपुर,
0: हाँ,
1: वहाँ पर एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पर एक्सकावेटर और जेसीबी बनती है।
0: अच्छा हाँ, मैं जानती हूँ पीथमपुर को तो।
1: जी।
0: चलिए, क्या उम्र क्या है आपकी?
1: मैडम मेरी उम्र 40 वर्ष है और मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ, रेडियो का बहुत दीवाना हूँ
0: अरे वाह,
1: और मेरा
0: अपनी
1: पहली बार
0: दीवानगी
1: फोन लगा है
0: बिल्कुल
1: आपके
0: बरकरार
1: रेडियो पे
0: रखिए। जी।
1: और मैं कहना चाहता हूँ कि जो रेडियो सुनता है ना,
0: हाँ
1: उसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है। जो सुनता है ना, तो
0: हाँ
1: उसकी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होती है,
0: बिल्कुल
1: ये मेरा
0: सही कह
1: मानना
0: रहे
1: है।
0: हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रेडियो से हमें तमाम तरह की ज्ञान प्राप्त होता है।
1: जी मैडम,
0: आज हम जो बात कर रहे हैं, जैसे जल की बर्बादी को रोके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमेशा, मतलब हर बार है ना, पानी, मानसून हमसे थोड़ा थोड़ा रूठता जा रहा है, क्योंकि
1: जी
0: पेड़
1: मैडम।
0: कटते जा रहे हैं,
1: हाँ, मैं
0: है
1: भोपाल में
0: ना?
1: आता हूँ ना, तो जब झील थोड़ी सी खाली देखता हूँ ना, तो मुझे भी लगता है
0: सच बात
1: कि
0: है। तो हमें
1: हाँ
0: हमारी आने वाली पीढ़ी को, उनके भविष्य के लिए, पानी को संरक्षित रखने के लिए सभी को थोड़े थोड़े
1: हम
0: प्रयास
1: हमारी
0: करने
1: आने
0: होंगे।
1: वाली पीढ़ी को बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं देना चाहते, उनको पर्यावरण अच्छा दे दें, उनको अच्छे पेड़ पौधे दे दें,
0: बिल्कुल,
1: पानी दे दें, तो यही अपने लिए बहुत
0: यही
1: अच्छा
0: विरासत है उनके लिए,
1: है, यही विरासत है
0: है
1: उनकी।
0: ना? तो बस इसी का प्रयास
1: आदमी क्या
0: करना
1: है,
0: है।
1: अपनी प्रकृति को अपने हाथ से खोते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे कैसे प्रयास आप करते हैं रवि जी? थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस बात पर।
1: मैडम मैं तो अपने मेरे दो बच्चे हैं,
0: हाँ,
1: उनको हमेशा यही शिक्षा देता हूँ कि अपने को कम से कम गाड़ी चलाना है, कम से कम अपने को जो बिजली की भी बचत करना है घर में,
0: हाँ
1: और जहाँ तक हो सके हम आसपास तो साइकिल का यूज करते हैं। हमारे घर में दो साइकिल भी है
0: हाँ
1: और एक इलेक्ट्रिक बाइक भी है, तो हम कोशिश हमारे स्तर से कर रहे हैं मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अपने स्तर पे हर व्यक्ति यदि कोशिश करता रहेगा तो हम सभी अपने मकसद में सफल होंगे,
1: और
0: ठीक है ना
1: एक और
0: रवि
1: बात
0: जी?
1: कहता हूँ कि मैं बताऊँ, भारत को स्वच्छ देखना चाहता हूँ मैडम,
0: बिल्कुल सही कह रहे
1: और
0: हैं।
1: जहाँ पे भी मैं अगर ये कचरा और ये पॉलिथीन उड़ते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा कुछ अंदर से फील होता है कि अगर मैं कुछ, मेरे पास समय नहीं है अभी कि मैं कुछ करूँ इसमें ज्यादा सोशल वर्क, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अगर आगे हो के अगर मैं फ्री हुआ, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे हो गए, बच्चे कमाने लग गए, तो मैं इसी काम में लगने वाला हूँ मैडम।
0: बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए रवि जी।
1: जी, मैडम
0: जी,
1: मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
0: मुझे भी बहुत
1: और मैं
0: खुशी
1: मैडम
0: हुई।
1: मेरे बालक का कल बर्थडे, उसका नाम लेना चाहता हूँ
0: बिल्कुल
1: रोहतक
0: लीजिए।
1: वर्मा, और मेरी मिसेज का नाम है नीतू वर्मा,
0: जी
1: और बड़े वाले बालक जो कंप्यूटर साइंस में बेंगलोर में पढ़ रहा है, उसका नाम है राज वर्मा।
0: चलिए, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे
1: और
0: आकाशवाणी परिवार।
1: मेरी माता जी का नाम मैडम शकुंतला वर्मा, और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी,
1: और मेरा
0: धन्यवाद।
1: गीत है मैडम,
0: गीत हमारी पसंद का होगा आज के कार्यक्रम में।
1: दिल दीवाने का डोला, दिल का
0: चलिए,
1: ये फेम
0: ठीक,
1: रोग पे। धन्यवाद
0: ओके, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: हाँ नमस्ते मैम,
0: नमस्ते, कहाँ
2: मैं हीरू जी बोल रही, बाग से, बाग
0: से?
2: बाग जिला धार।
0: धार जिले से कौन बोल रही हैं?
2: मैं हीरू बोल रही, हीरू पड़ियार।
0: अच्छा, हीरो।
2: हाँ,
0: कैसी हैं?
2: हम तो अच्छे, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए।
2: बढ़िया
0: आपके?
2: होती आप, बढ़िया होती।
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हीरू जी, आज हम ये बात करेंगे कि है ना, पानी की बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं हम? आप कैसे रोकती हैं?
2: पानी की बर्बादी को, ये तो मेरे को इतना नहीं आता है मैम।
0: हाँ,
2: हम तो बर्तन मानते, तो कई साबुन रसोड़े से मान लेते, पानी की बचत करते हैं, ज्यादा पानी ढोलते नहीं है।
0: अच्छा,
2: हाँ, पानी ढोलना कहाँ पे, अपन को पानी पीने को मिल रहा है, इतना ही बहुत है मैम।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
2: हाँ,
0: चलिए,
2: अपन पानी ढोल ढोल करेंगे फिर अपन क्या, कैसे जिएंगे? हाँ,
0: बिल्कुल सही बात है।
2: पानी से तो जी रहे अपन, नहीं तो कैसे जी रहे अपन?
0: जल ही जीवन है।
2: अभी तो जीवन है, वो मछली जैसे बाहर निकल अंदर रहती समुद्र में तो जीती, बाहर निकल जाती तो मर जाती है वो।
0: बिल्कुल सही बात है, वही हमारा जीवन है, बिन पानी सब सून, यानी हाँ। पानी के बिना हम सबका जीवन संभव नहीं है।
2: तो रोटी एक चटनी मिले ठीक ही सही, अपन को पानी होना जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है। तो बस ये बात हम सभी को समझना चाहिए कि यदि आज हमारे पास भरपूर पानी है तो कल के लिए हमें उसे बचा के रखना बेहद जरूरी है।
2: मैम लोग समझते थोड़ी, ढोल ढोल करते इनके तो क्या,
0: वही अब हो सकता है कि अपन जो बात कर रहे हैं वो सबके कानों तक पहुंचे, और जो लोग बर्बादी करते होंगे वो शायद उन्हें थोड़ी बहुत समझ आ जाए। बस यही आकाशवाणी का उद्देश्य होता है कि लोगों में जागरूकता फैलाना। ठीक है जी,
2: जितना बचत करेंगे जितना अच्छा रहेगा जीवेंगे तो अपन क्या।
0: बिल्कुल, चलिए हीरो जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे कॉलर्स भी लाइन में हैं तो हम उनसे बात करेंगे। आपसे आज के लिए इतनी ही बात, ठीक है,
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: खाते गांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: खाते गांव से
1: हाँ,
0: गोविंद जी,
1: गोविंद जलोदिया।
0: गोविंद जलोदिया, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, ठंडी पड़ गई थोड़ी, जब पानी वानी गिर गया तो।
0: बहुत ज़्यादा तो नहीं गिर रहा, लेकिन हाँ, हल्का सा जैसे गिरता है तो थोड़े से मौसम में ठंडक आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस उमस हो जाती है।
1: हाँ, हो जाती है, पर वो
0: आज गोविंद जी, हम जो बात कर रहे हैं ना, आज हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
1: खाते गांव से बोल रहा था, गोविंद जलोदिया।
0: हाँ, आपसे बातचीत अधूरी रह गई थी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो गोविंद जी, आज जो हमारा विषय है, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम का,
1: हाँ, अच्छा,
0: कि पानी की बर्बादी को कैसे रोका जाए।
1: पानी का बर्बादी का कैसा रोका जाए?
0: बताइए ना इस विषय पर, आप
1: तो
0: कैसे
1: पानी
0: पानी
1: का क्या
0: का।
1: है कि पानी तो बहुत ही मतलब अनमोल है चीज है। पानी तो मतलब क्या है, जल स्तर कम होता ही जा रहा है। पानी कम ढोलो, बहुत सारे नल की टोटियां पे लगी, नगर पालिका छोड़ देती है ऐसी पटक पटक, और लोग पटक रहे, चलते रहता है काम उसका। क्या अपने घर भी यही हाल है, नल चल रहा है तो चल रहा है, बंद हो रहा है तो बंद हो रहा है, कोई देख रेख करते नहीं है क्या?
0: तो ये सबको
1: और
0: ध्यान
1: नहा
0: देने
1: दिया
0: की
1: तो कम
0: जरूरत
1: से
0: है।
1: कम फव्वारे से नहाया करो तो और कम पानी का उपयोग होता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन है ना,
1: हाँ,
0: पानी को, बर्बादी को तो रोकना है ना हम सभी को,
1: पानी
0: है
1: को
0: ना?
1: रोकना है, कम उपयोग करो जी। बहुत सारे लोग क्या है कि मतलब बहुत ज्यादा ही उपयोग करते हैं उसका। अक्सर हमारे यहाँ खाते गांव में तो क्या है कि रोड सुबह जब नहलाते हैं, जब यहाँ से वहां से रोड को नहलाते थे, जब लोगों को मिल नहीं रहा और ये फेंक रहे हैं।
0: अरे, ये बहुत गलत बात है, और जहां कहीं भी
1: बहुत
0: हम ऐसी पानी की बर्बादी होते देखें ना, तो हम उन्हें बिल्कुल बेतकल्लुफी से रोकें, ये हम सभी का फर्ज है।
1: क्योंकि वो हमारे यहाँ क्या है कि पानी की वो नहीं है, नर्मदा जी बांस में ही है तो
0: हाँ,
1: उससे सप्लाई होता रहता है, तो पानी का कोई वो नहीं है।
0: हाँ, तो आप रोकिए, आप बोलिए उनको कि यदि आज हम पानी की बर्बादी करेंगे तो कल पानी की कमी होगी,
1: ठीक
0: है ना? ठीक है गोविंद जी, सबके छोटे छोटे प्रयास ना
1: हाँ,
0: बहुत बड़े संकट से हमें मुक्ति दिला सकते हैं।
1: धन्यवाद,
0: ठीक है, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो, हेलो, हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी,
1: हेलो।
0: नमस्ते।
1: हाँ जी
0: हाँ नमस्ते, कौन
1: नमस्ते
0: बोल रही है?
1: जी, मैं कामिनी दसूंदी बोल रही हूँ, टिकरी से, बड़वानी जिले के टिकरी गांव से।
0: अच्छा, बड़वानी से। कामनी जी, कैसी हैं आप?
1: बड़वानी जिले के टिकरी गांव से। आओ।
0: अच्छा, कैसी हैं आप?
1: बढ़िया बढ़िया
0: और क्या काम करती हैं?
1: सर। मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, हाउसवाइफ हैं। तो कामनी जी, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि पानी की बर्बादी को आप कैसे रोकती हैं, या पानी खूब जब कपड़े धोती हैं, बर्तन
1: नहीं,
0: मांजती
1: पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। पानी अमूल्य है, अपने लिए जल ही जीवन है।
0: हैं। ये हम सब समझते हैं, लेकिन है ना, रोकते नहीं हैं।
1: रोकते नहीं है, बस वो जैसे नल बह रहा है तो उसको बंद नहीं करेंगे। बर्तन धोएंगे तो नल में धोएंगे, ऐसे नहीं करना। बर्तन में लेके पानी में बर्तन धो तो उससे पानी की बचत
0: बिल्कुल,
1: होगी।
0: बहुत छोटी छोटी बातें हैं। यदि आप टब में पानी लेके फिर बर्तनों को
1: में
0: धोंगी
1: पानी
0: तो
1: लेके
0: पानी की
1: धोएंगे
0: बर्बादी रुकेगी। कार अगर आप पाइप से ना धोएं, बाल्टी से धोएं, तो उससे पानी की बर्बादी रुकेगी,
1: उससे पानी की बर्बादी
0: है ना।
1: रुकेगी।
0: बहुत सारी बातें हैं। हमारी
1: बहुत सारी
0: सब्जी,
1: बातें सर।
0: दाल, चावल, ये सब धोने का पानी यदि हम पेड़ों में डालेंगे तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और पानी की बर्बादी बचेगी।
1: पानी की बर्बादी भी नहीं होगी।
0: बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम इन सब का ध्यान रखें तो हम
1: जी
0: आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं।
1: दीदी, पहली बार मेरा कॉल लगा है। मैं बहुत दिन से प्रयास कर रही थी मगर नहीं लगा, लेकिन आज प्रयास सफल हो गया।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कामनी जी, ये प्रयास तब और सफल होगा यदि आप अपने आसपास के लोगों को भी पानी बर्बाद करने से रोक सकें,
1: जी
0: है ना। कहीं भी आप किसी को अगर ऐसा कुछ करते देखें तो उसे बिल्कुल जाकर रोकिए कि ये गलत है, उसे सही तरीका बताइए। या कहीं नल खुला हुआ देखें तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए बिना किसी झिझक के, है ना।
1: पानी
0: तब
1: का भी, और मैं दीदी, मैं तो लाइट का भी हमेशा घर में खेती रहती हूँ, वहां का लाइट जल रहा है, फालतू जल रहा है,
0: बिल्कुल
1: उसका
0: हर
1: भी
0: चीज
1: करो।
0: की अगर बचत हम करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छा भविष्य दे सकेंगे, अच्छी विरासत देकर जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, आज के कार्यक्रम में आपसे हमने जो बातचीत की वो आप कल प्रोग्राम में सुन सकेंगी 11 बजे से, और हमें बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके। धन्यवाद कामनी जी।
1: थैंक यू।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 5 दिवसीय प्रदेश प्रवास के पहले दिन आज बैतूल में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। इसके बाद वे ओंकारेश्वर के लिए रवाना होंगी। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को और प्रगाढ़ करने के प्रयासों के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। उन्होंने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा रही है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुलिस में उपनिरीक्षक के 10 और आरक्षक के 50 पदों पर सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल उज्जैन के महिदपुर में विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डोंगला से गुजरने वाला नया 4-लेन महिदपुर शहर के विकास को गति देगा। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर संभाग के अनेक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। और भारत अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे 1 दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का 3रा और अंतिम मुकाबला शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे हेमलता के स्वर में, फिल्म का नाम अखियों के झरोखों से। गीत लिखा रविंद्र जैन ने, संगीतकार रविंद्र जैन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कोटवा बलिया से। श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। अगले श्रोता नेवादा गाजीपुर से हैं, प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय। अगले श्रोता अमरावती महाराष्ट्र से हैं, कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, राउफ, शाहिद। अगले श्रोता अकोला से हैं, रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मुगले आजम से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और साथियों ने। गीतकार हैं शकील बदायूं, संगीतकार नौशाद। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है घंटाघर चौक खंडवा से। श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। अगले श्रोता नांदेड़ से हैं गौतम नगर, प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे। इस गीत को सुरों से सजाया किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से। श्रोता है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। अगले श्रोता गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

आशा भोसले और किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सीता और गीता से। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। श्रोता है ताज अंसारी, गुलाम साबिर और मिराज जहां। अगले श्रोता धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं, रामचंद माखीजा, शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार, श्रीमती सविता, स्वाति और पूरा माखीजा परिवार। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार की 13वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना अपनी बेटी पार्वती के भाग जाने से दुखी भृगु साई नदी में कूदकर आत्महत्या करना चाहता है। यशवंत उसे बचाता है। भृगु हड़ताल को लेकर यूनियन नेताओं पर जमकर बरसता है। रामू बामू कंपनी के पुराने टायर बेचकर बोतल लेकर आते हैं। खाने के लिए मछली का इंतजाम करने के लिए दोनों मिलकर कंपनी के भंडार से जिलेटिन चुराकर साई नदी में विस्फोट करते हैं। विस्फोट में लिचू का लड़का जगन्नाथ मारा जाता है। लेबर इंस्पेक्टर का सहायक राधेश्याम ठाकुर साहब से मिलता है और कमीशन लेकर कंपनी के मजदूरों की हड़ताल से निजात दिलाने का सौदा तय करता है। नारायणी को अस्पताल में सफाई करने का काम मिल जाता है। पुलिस विस्फोट करने के आरोप में रामू बामू को गिरफ्तार कर लेती है और वर्कसाइट पर विस्फोटक का भंडारण करने के कारण कंपनी पर 10,000 रुपए का जुर्माना करती है। मुंशीगंज के कसाईयों द्वारा फेंके हुए सड़े कच्चे मांस को खाकर दलित बस्ती के कई बच्चे मर जाते हैं और बहुत से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होते हैं। अब आगे

0: नारायणी, अरे सफाई हो गई क्या?
1: जी डॉक्टर साहब।
0: गुड। देखो नारायणी, अभी तुम्हें एक काम और करना है।
1: जी कहिए।
0: देखो वो सामने मरीजों के खून और मवाद से सनी पट्टियां पड़ी हैं, इन्हें साई नदी के किनारे गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना, समझ गई?
1: जी।
0: ये रोज का काम होगा, समझ गई तुम?
1: जी जी समझ गई डॉक्टर साहब।
0: शाबाश।

0: अरे नारायणी, तुम ये गड्ढा क्यों खोद रही हो?
1: वो यशवंत बाबू, खून और मवाद भरी पट्टियां दबानी है इसमें।
0: कोई बात नहीं, ये तुम फावड़ा मुझे दे दो, गड्ढा मैं खोद देता।
1: नहीं नहीं, आप यूनियन के नेता हैं, साफ कपड़े पहने हुए हैं।
0: अरे तो क्या हुआ, अब लाओ मुझे दो, मैं खोदता हूँ। अरे लाओ दो। नारायणी, गड्ढा तो खोद गया, ला कपड़े मुझे दे दे।
1: ये लीजिए।
0: अच्छा, बर्खास्त हो जाने के बाद तुम क्या करोगी नारायणी? सच सच बता नारायणी, क्या उस दिन तू ठाकुर साहब के घर अपनी इच्छा से पाप का काम करने गई थी? बोल, जवाब दे।
1: हे भगवान, क्या जवाब दूं मैं इसे? क्या ये मेरी बात का विश्वास करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसे मेरी बात का यकीन होगा। पर सुमति काकी के अलावा और कौन है इस दुनिया में जो दिल खोल कर दिखाने पर मेरी सच्चाई पर विश्वास करे? मैं जानती हूं, और ऐसा कोई भी नहीं है।
0: क्या सोचने लगी नारायणी?
1: हाँ, कुछ नहीं बाबू।
0: नारायणी, क्या मैं तेरी कोई सहायता कर सकता हूँ?
1: बर्खास्त होने पर हम लोग एक साथ चले जाएंगे। अगर बाबू रास्ते में मेरा पति मर गया तो?
0: नारायणी, नहीं मरेगा तेरा पति, नहीं मरेगा। देखा नहीं लिचू लंगड़े का क्या हाल हुआ? बेटे के मरने के बाद से सारा दिन बेटे की चिता जलने वाली जगह पर ही पड़ा रहता है। भिखू की बेटी पेट की भूख मिटाने के लिए पैसेंजर ट्रेन में भाग गई। अरे कितने बच्चे जहरीला मांस खाकर मर गए। देख, अब धैर्य रख नारायणी, मेरा दिल कहता है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
1: यशवंत बाबू, मजदूरों की बातें छिप कर सुनी थी, सहायता की जरूरत मुझे नहीं आपको है। हा? आपको और दूसरे यूनियन नेताओं को अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए।
0: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी?
1: वो मजदूर तुम लोगों को जिंदा गाड़ देंगे, खून खराबा होगा, वो तुम लोगों के चीथड़े बना डालेंगे। मैं पूछती हूँ, सच सच बताना, क्या तुम लोगों ने सबके साथ विश्वासघात नहीं किया? क्या भूख से मरने वालों की हत्या तुम लोगों ने नहीं की?
0: इतनी कोशिशों के बावजूद इतने लोगों की भलाई हम नहीं कर पा रहे हैं नारायणी, फिर भी कम से कम एक आदमी के लिए कुछ करने की शक्ति हम में जरूर है। बिल में छिपे हुए सांप की तरह शरीर के किस हिस्से में वो शक्ति है, ये ना तो तुझे मालूम है और ना ही मुझे।
1: मैं फिर कहती हूँ यशवंत बाबू, हमें तो हालात के सामने मजबूर होकर मरना ही है, लेकिन लेकिन तुम लोगों को जिंदा रहना है, हड़ताल कराने के लिए जिंदा रहना है, मजदूरों को भूखा मारने के लिए जिंदा रहना है।
0: नारायणी, सुन नारायणी, देख मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में बहुत कष्ट सहा है, मैं सब जानता हूं सब, लेकिन क्या तुम इस तरह टूट जाओगी? इतने दिनों से कष्ट सहते हुए हम लोगों ने अपनी हड्डियों को सीमेंट के खंभे जैसा मजबूत नहीं किया है। अरे गांधी बाबा ने कहा था कि अगर उन्हें फिर से जन्म लेना पड़े तो वो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो दलितों के घर में जन्म लें। तू रो क्या रही है नारायणी?
1: यशवंत बाबू, मैं क्या करूं? सरकारी अस्पताल के बरामदे में भी मेरे पति को रहने नहीं देते।
0: क्या?
1: हाँ, यहाँ की बैरक से सब जाने लगेंगे तो मैं इन्हें साथ लेकर चलूंगी। ऊपर से एक दूर पीता बच्चा भी है। हम मर जाएंगे, मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गई हूँ। अच्छी तरह से समझ गई हूँ यशवंत बाबू, हम मर जाएंगे।
0: देखो नारायणी, अब खुद पर भरोसा रखो। भरोसा खो देने वाले और मरे हुए इंसान में कोई फर्क नहीं होता। खुद पर भरोसा रखो।

0: नारायणी नारायणी नारायणी इधर आ।
1: क्या है लिच्चू?
0: नारायणी मेरे लिए दो रोटी लाकर दे सकती है? देख देख मेरा पेट कैसे सूख है, नदी का पानी भी कड़वा लगने लगा है। नारायणी
1: लिच्चू चल मेरे साथ चल, तू यहाँ ऐसे बैठा रहेगा तो क्या तेरा मरा लड़का वापस आ जाएगा? चल, देख यहाँ बैठा बैठा तो तू वैसे ही मर जाएगा।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नारायण, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। चल मुझे तेरी रोटी नहीं चाहिए नारायण।
1: सिर्फ नहीं करते
0: तू चल यहाँ से।
1: सुन तो
0: मुझे कहीं नहीं जाना है।
1: मेरी बात तो सुन।
0: मुझे भी अपने पास बुला ले। मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जगन्नाथ
1: लिच्चू हौसला रख। नहीं लिच्चू नहीं,
0: जगन्नाथ
1: रोते नहीं।
0: जगन्नाथ।

0: नारायणी
1: तुम तो वही हो ना जो यशवंत के साथ यूनियन में रहते हुए भी कंपनी के साहबों की गुलामी करते हो।
0: अब देखो सब अपने अपने फायदे की सोचते हैं, तो मैं भी सोचता हूँ क्या गलत करता हूँ।
1: तुम्हें मुझसे क्या चाहिए?
0: ओहो नारायणी, मैंने तुझसे पहले भी कहा था ठाकुर साहब बीमार हैं और यहाँ पर हड़ताल चल रही है,
1: तो
0: तो ठीक तरह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है और तू साहब के लिए नई तो है नहीं, है ना? देख नारायणी, मुझे साहब ने खुद तुझे ले जाने के लिए भेजा है।
1: पर मैं नहीं जाना चाहती।
0: अरे नारायणी, क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहती है?
1: क्या मतलब?
0: मतलब साफ है नारायणी, साहब ने धमकी दी है कि वो तुझे उस रात वाली घटना को लेकर झूठ मूठ बदनाम कर देंगे। हाँ। तो तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। हाँ। अब सोच ले क्या करना है तूने, चलना है या नहीं? आजा, चल चल चल चल।

0: देख नारायणी, साहब थोड़ी देर में आएंगे, तब तक तू यहाँ आराम कर, है? मैं अभी आता हूँ, ठीक है? अभी आता हूँ मैं।
1: मैं किस जंजाल में फंस गई हूँ? लगता है आज कल में कयामत आने वाली है। खून की नदियाँ, साई में तूफान, इस तूफान में सब ध्वस्त हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं, ये ठाकुर साहब भी नहीं, ठाकुर साहब भी नहीं। कौन कौन हंस रहा है?
2: पहचाना नहीं नारायणी?
1: चौधरी साहब, आप?
2: यानी पहचान लिया, इतने साल बाद भी पहचान लिया, तुझसे इस तरह यहाँ मुलाकात होगी। नारायणी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
1: मैंने भी नहीं सोचा था।
2: नारायणी, तू आज भी मुझसे प्यार करती है ना?
1: प्यार? और तुमसे? तुम्हारे लिए प्यार सिर्फ एक वासना है, शरीर की आग को ठंडा करने का जरिया भर है।
2: नारायणी, तुझे देखकर और तेरी दुर्दशा के बारे में सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ। अले, कुछ ये पैसे रख ले, तेरे काम आएंगे। नारायणी
1: साहब, इन पैसों के बदले में आपको क्या चाहिए?
2: कुछ नहीं नारायणी, कुछ नहीं, बस तेरे रूप की गंगा में गोता लगाना चाहता हूँ नारायणी।
1: मैंने तो सुना था कि आपकी शादी हो गई थी।
2: हाँ, ठीक सुना था तूने नारायणी।
1: साहब, आपकी पत्नी गंगा को पूछती है?
2: गंगा को पूछती है मतलब?
1: हाँ, मेरा मतलब है गंगा की पूजा, पूजा पाठ तो करती है ना?
2: हाँ, करती है, पूजा पाठ जरूर करती है। मैंने तेरे बारे में उसे बताया था, उसकी बहुत इच्छा है कि अगर तू कभी मिले तो तेरी देखभाल करूं, तेरी कोई दिक्कत हो तो मैं तेरी मदद करूं नारायणी। हाँ हाँ, उसने कहा था मुझे।
1: यही वो आदमी है जो वर्षों पहले मेरी देह को छल्ली करके भाग गया था, मेरा सारा सुख छीन लिया था इसने, मुझे आसमान से नरक में धकेल कर कायरों की तरह मुझे पाकर चुपके से निकल भागा था, और आज फिर इसकी गंदी नियत मुझ पर लात ठपका रही है। जी तो करता है कि मैं इसका गला दबा दूं, लेकिन अभी तो इस राक्षस के हाथों किसी तरह खुद को बचाना है, मगर कैसे? हाँ, वो सामने फल काटने वाला चाकू पड़ा है। हाँ, यही मेरी असमत की रक्षा कर सकता है, यही मेरी असमत की रक्षा कर सकता है।
2: अरे कहाँ गुमसुम हो गई तुम, है? बोलना, क्या चाहिए तुझे? धन, दौलत, पैसा, सब कुछ दूंगा, बोलना नारायणी, क्या चाहिए? देख देख नारायणी, तेरा पति बीमार है, तेरा बच्चा छोटा है, मैं तेरी धन दौलत से सब
1: देखो। हा? देखो, आगे मत बढ़ना।
2: अरे नहीं, पास आओ,
1: ये चाकू मैं आपके सीने में भोंक दूंगी। आपकी बेहतरी इसी में है कि तुरंत यहाँ से चले जाइए। सुना आपने? आगे मत बढ़ना, अच्छा नहीं होगा।

0: ये हड़ताली मजदूरों का मजाक ही बना रखा है। बोलो बोलो
1: साथियों, हड़ताली मजदूर जब तब हमसे टकराते रहते हैं, भले ही कंपनी की शर्तों ने हमारे हाथ बांध रखे हो, लेकिन हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते।
2: हाँ हाँ, हमें आत्मसम्मान से जीना है। हड़ताली मजदूरों का मुकाबला करने के लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए।
1: दलित बैरक की पार्वती जब से भागी है, हड़ताली मजदूर आते जाते हमें गाली देते हैं, तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं। हम ये अपमान नहीं सह सकते।
2: हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अब की बार हड़ताली मजदूरों का जुलूस इस ओर आएगा तो हम उनका मुकाबला करेंगे।
1: हमें पीस वर्करों की यूनियन बना लेनी चाहिए, हड़ताल करने के लिए नहीं, बल्कि हड़तालियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए।
2: हमारी यूनियन का नाम होगा आजाद मजदूर यूनियन। अब की बार

0: अरे दो दिन से नारायणी घर नहीं आई। अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे मैंने, पर वो कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। अरे उसे उसे इस दूध मुहे बच्चे की भी सुध नहीं रही। भगवान पता नहीं कहाँ होगी वो, अरे किस हाल में होगी वो। भगवान
1: शिवो, शिवो भाई
0: कौन है, कौन है दरवाजे पर?
1: शिवो मैं हूँ, लिचू।
0: लिचू, लिचू तू इतनी रात को यहाँ क्या करने आया है?
1: डर मत, मैं रोटी मांगने नहीं आया।
0: तो फिर तू क्यों आया यहाँ?
1: शिवो भाई देखने आया हूँ कि नारायणी अभी तक आई या नहीं।
0: अरे नहीं आई वो, अभी तक नहीं आई। अरे सब जगह ढूंढ लिया उसे, पुलिस वालों से भी पूछा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। अरे लीचू भाई समझ में नहीं आता।

0: दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा या अंदर आएगा?
1: शिबू,
2: अंदर आ शिबू।
1: बच्चे को गोद में उठा ले और मेरे साथ चल। खुरपी वगैरह कुछ भी साथ ले ले।
0: ये क्या कह रहा है तू? अरे क्या तुझे पता है नारायणी कहाँ है?
1: हाँ पता है, और तू मेरे साथ चल, खुरपी जरूर ले ले।
0: मगर मेरे पास खुरपी तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास कुल्हाड़ी है।
1: चलेगी चलेगी शिबू, जल्दी कर, समय कम है, सवेरा होने से पहले पहुंच जाना है हमें।
0: अरे देख शिबू, शिबू वो देख, पलंग पर बैठी नारायणी साहब के पैर दबा रही है, वो देख।
3: अरे हाँ, अरे हाँ, चल चल जल्दी से अंदर चल, चल चल
1: आजा। कौन कौन है?
4: क्या तुम दोनों यहाँ?
5: हम दोनों। पति को घर पर अकेला छोड़कर तू यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है?
6: अभी तुझे मजा चखाता हूँ मैं।
4: मैं जानती थी कि तुम दोनों यहाँ जरूर आओगे। मेरा विवेक ही तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाया है। लाओ लाओ कुल्हाड़ी मुझे दे दो।
6: नहीं, मैं कुल्हाड़ी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा।
4: दे दो या मुझे जबरदस्ती छीनना पड़ेगा। मुझे दे दो कुल्हाड़ी, दे दो मुझे, कुल्हाड़ी मेरे हाथ में।
1: नारायणी तू ये क्या कर रही है? नहीं नहीं नहीं नारायणी नहीं, देख देख देख, ऐसा मत कर नारायणी,
4: मैं तुझे नहीं छोडूंगी। तू मुझे बदनाम करेगा, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। अब देखती हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। अरे भागता कहाँ है? मैं

0: यशवंत, यही नाम है ना तेरा?
1: अब जी।
0: देख यशवंत, हड़ताल खत्म हो चुकी है, तुम्हारे सारे के सारे नेता गिरफ्तार हो चुके हैं।
1: हाँ?
0: 60 मजदूरों को वापस काम पर रख लिया गया है, दलित बैरक के सभी मजदूरों को बर्खास्त कर दिया गया है, राम तुझे भी।
1: क्या?
0: ये ले लिफाफा, इसमें तेरा हिसाब है। जाकर शंभू के दल से मिल जा, अभी शंभू का दल बहुत ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा। जा।
1: मैं

0: शंभू काका, रुक जाओ शंभू काका, मैं भी आ रहा हूँ।
1: शंभू काका हाँ? वो देखो यशवंत दौड़ा चला रहा है, थोड़ी देर रुक जाते हैं।
2: ठीक है।
0: अरे शंभू काका, शंभू काका, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया काका। हड़ताल विफल हो गई, यूनियन के सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए।
2: बड़ा भोला है रे यशवंत तू।
0: हाँ?
2: अरे यूनियन के नेताओं को तो शास्त्री जी की सिफारिश पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ताकि विद्रोही मजदूरों से उनकी जान की रक्षा की जा सके। जब शास्त्री जी का इशारा होगा यूनियन नेता छूट जाएंगे।
0: ये अब क्या कह रहे हो शंभू काका?
1: हाँ, और जानता है यशवंत, तुझे इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि तू हमारा सच्चा हमदर्द है, ईमानदार है। उन लोगों के लिए तेरा मजदूरों के हाथों मर जाना ही अच्छा है।
0: नहीं नहीं भृगु, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है।
2: यही सच है यशवंत, मगर तेरे जैसा सच्चा इंसान इस कड़वी सच्चाई को कैसे समझ सकता है। एक बात और, शास्त्री भी कंपनी के हाथों बिक चुका है।
0: क्या? ओ, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब।
2: चल यशवंत, आ चले।
1: हाँ, चल।
0: लेकिन काका, लिचू कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा।
2: उसने साई नदी में कूद कर अपनी जान दे दी।
0: ओ, और बसुमती काकी?
1: माँ पुलिस की गोली का शिकार हो गई।
0: और नारायणी और उसका पति?
2: शिबू मर गया।
0: क्या?
2: नारायणी उसकी लाश को छोड़कर आने के लिए तैयार नहीं हुई। तू हमारे साथ चल, अगर मजदूरों को पता लग गया कि तू यहाँ है तो वो तुझे जिंदा गाड़ देंगे।
0: नहीं काका, मैं नहीं जाऊंगा।
2: क्या?
0: आज तक आपका ये डिब्बा खाली है ना?
2: ये हमेशा खाली रहेगा यशवंत, कभी नहीं भरेगा ये डिब्बा।
0: ये मेरे हिसाब के रुपए हैं काका, सारे रुपए मैं आपके इस डिब्बे में डाल रहा हूँ। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ फिर हड़ताल होगी, तब ये रुपए बहुत काम आएंगे। तब किसी को भूखा मत मरने देना काका, किसी को भूखा मत मरने देना।
2: एक बात सुन यशवंत।
0: हाँ बोलो काका।
2: उस दिन की घटना से तूने हमेशा नारायणी को चरित्रहीन समझा, लेकिन वो चरित्रहीन नहीं है।
0: ये तुम क्या कह रहे हो काका?
2: मैं ठीक कह रहा हूँ, तू भी हमारे साथ चलता तो कितना अच्छा होता।
1: हाँ चलना यशवंत।
0: नहीं काका नहीं, मुझे वापस जाना होगा, हर हाल में वापस जाना होगा।
2: क्या नारायणी के पास?
0: उसके पास भी जाऊंगा, उसे और उसके बच्चे को मेरी जरूरत है। और काका एक कारण और भी है मेरे वापस जाने का।
2: एक कारण और?
0: हाँ काका एक कारण और।
1: यशवंत, अरे रुक जाओ रुक जाओ, यशवंत रुको।
3: ओफो, अरे इतनी रात को कौन आ गया भैया?
4: अरे ठहरो भैया, आ रहा हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? आ रहा हूँ।
3: यशवंत तुम?
0: हाँ मैं।
3: इस वक्त? चलो चलो जाओ यहाँ से, जाओ। अरे जाओ यहाँ से, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, समझे? जाओ यहाँ से।
0: शास्त्री जी, मैं वो तलवार हूं जिस पर आज तक जंग लगी हुई थी, लाचारी की जंग, लेकिन हकीकत ने आज इस जंग को उतार दिया है। अब इस तलवार में एक नई चमक पैदा हो गई है, विद्रोह की चमक शास्त्री जी, और आज ये तलवार तेरे अंत का कारण बनेगी शास्त्री।
5: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जंग लगी तलवार की 13वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 5 दिवसीय प्रदेश प्रवास के पहले दिन आज बैतूल में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुई। इसके बाद वे ओंकारेश्वर के लिए रवाना होंगी। भारत और फ्रांस आर्थिक और आर्थिक औद्योगिक सहयोग को प्रगाढ़ करने के प्रयासों के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। उन्होंने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा रही है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुलिस में उप निरीक्षक के 10 एवं आरक्षक के 50 पदों पर सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज शाम को रानी दाई नाटक का मंचन किया जाएगा। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर भोपाल के भारत भवन में 19 जून को शाम 7 बजे फ्रांस के संगीत बैंड की प्रस्तुति होगी। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर संभाग के अनेक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है और भारत अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
7: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। दिन का 1 बजा है, लीजिए सुनिए महिला सभा कार्यक्रम।

महिला सभा का आज का अंक इन पंक्तियों के साथ कि जब बादल टूटते हैं तो फुहार आने लगती है, जब मिट्टी टूटती है तो खेत बनने लगते हैं और बीज टूटता है तो पौधा बनने लगता है। जी हाँ, ईश्वर इन टूटी हुई चीज़ों का बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं, है ना प्यारी सखियों। तो अगर आप खुद को कभी अकेला, असहाय और टूटा हुआ सा महसूस करें ना, तो याद रखिएगा कि जीवन में आप जल्द ही कोई कमाल करने वाली हैं और ईश्वर आपके साथ हैं। जी हाँ, इस विचार के साथ हाजिर हूँ आपकी सखी संयोगिता जोशी, प्यारा सा नमस्कार। आज 18 जून है, ये तो हम सभी जानते हैं। सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस हम मना रहे हैं सखियों। ये दिन प्रयास है कि हम प्रकृति के अनुरूप जीवन जीते हुए भोज्य पदार्थों में शुद्धता रखें। वैसे शुद्धता की बात तो हम हमेशा ही करते हैं, है ना। जिम्मेदारी के साथ स्थानीय कृषि को हम बढ़ावा देते रहें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हम करते रहें और भोजन की जो पारंपरिक शैली है उस कला को हम जीवित रखने का प्रयास करें। सतत प्रक्रिया और सतत गैस्ट्रोनॉमी का यही संदेश है, ताकि हम केमिकल युक्त भोज्य पदार्थों से बचें और खुशहाल जीवन जीते रहें। यही उद्देश्य है सतत विश्व गैस्ट्रोनॉमी दिवस का। जी हाँ सखियों, ये प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी को कम करती है और हरित भविष्य, टिकाऊ जो प्रथाएं हैं उनमें योगदान देती है। टिकाऊ गैस्ट्रोनॉमी खाद्य उत्पादन जो हैं वो पर्यावरण पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं ना, उन्हें भी कम कर रही है। तो कितना अच्छा होना कि मॉडर्न और गैस्ट्रोनॉमी के समावेश से हम प्राकृतिक रूप से जिएं, खुश रहें और मुस्कुराते भी रहें, है ना सखियों। एक और संदेश हम आज कार्यक्रम के माध्यम से अपनी सखियों को देना चाहेंगे कि समाज के स्वस्थ निर्माण के लिए नशा मुक्ति बहुत कारगर उपाय है, है ना सखियों। भारत सरकार का बहुत ही मजबूत कदम है ये नशा मुक्ति भारत अभियान। ठीक है ना सखियों। 15 अगस्त 2020 से शुरू किया गया यह अभियान और पूरे देश में लगभग हर सिटी में लागू है। समाज के हर वर्ग को नशे से दूर रखने के लिए परिवार के साथ साथ, जैसा मैंने कहा कि सरकार भी प्रयासरत है। खास पर तौर पर जो हमारे युवा होते बच्चे हैं ना, माता पिता से दूर होते हैं, कभी कोचिंग के लिए, कभी पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि खालीपन या अत्यधिक दबाव के कारण नशे की तरफ वो आकर्षित हो जाते हैं। तो समाज के लिए हमारे युवा होते बच्चों की जो ये लत है, ये बहुत बहुत बहुत दुखदायी है सखियों। तो कोशिश ये हो कि हम युवा होते बच्चों को अपना सानिध्य बराबर देते रहें, है ना, उनके साथ संवाद हम करते रहें, बातचीत होती रहे, उन्हें खाली कभी ना छोड़ें, ठीक है। परिवार के लोग भी जब खुशनुमा माहौल बच्चों को देंगे या नशे का शिकार जो व्यक्ति है उसे देंगे, और प्यार भरे माहौल देने की जो कोशिश है वो कामगार होगी और नशे से जो परिवार के सदस्य हैं वो दूर रहेंगे, है ना। बच्चों के साथ साथ परिवार का कोई भी सदस्य नशे की तरफ ना जाए, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए सखियों।

0: तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। जी हाँ प्यारी प्यारी सखियो, प्यार तो परिवार के सदस्यों के साथ होना ही चाहिए। अगर ये ना होना तो हमारा परिवार बिखर भी सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरकारी योजना की। उद्देश्य आज बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस योजना का जिक्र कर रहे हैं आपके साथ, महिला शक्ति योजना, जी हाँ, इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को अनुकूल वातावरण प्रदान करना, जहाँ वो सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके। अच्छी योजना है ना, इससे वो सरकारी योजना की जो सुविधाएं हैं उनकी जानकारी ले पाएंगी, साथ ही उनके भीतर जो कौशल छुपा हुआ है, जो क्षमता है, उसे निखार पाएंगी और साक्षरता को बढ़ावा देती है ये योजना। स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े जो अवसर हैं उसको भी बढ़ावा दे रही है महिलाओं के संदर्भ में महिला शक्ति योजना। मिशन शक्ति के तहत आपातकालीन सेवाएं, अस्थायी आश्रय और कानूनी परामर्श की सहायता भी दी जाती है इस योजना के माध्यम से। तो सखियो, अधिक जानकारी के लिए आप महिला एवं बाल विकास की वेबसाइट पर देख सकती हैं। तो परिवर्तन की लहर में हम क्यों पीछे रहें, हमारी सखियां क्यों पीछे रहें, स्वयं को पीछे मत ले जाइए, आगे बढ़िए और अपनी तरक्की कीजिए। जब परिवर्तन की बात हो ना सखियो, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है जलवायु पर, जो क्षण क्षण पर पन पल बदल रही है और हर मोड़ पर हमें एक नया संदेश भी दे रही है। जलवायु परिवर्तन और महिला भागीदारी, जी हाँ, रागिनी माथुर, डॉक्टर रागिनी माथुर की ये वार्ता अब हम आपको सुनवा रहे हैं, आइए सुनिए।
1: जलवायु परिवर्तन, इसमें महिलाओं की भागीदारी। परिवर्तन एक प्रकृति नियम है। हर परिवर्तन एक चुनौती होता है, क्योंकि परिवर्तन के कारण ही व्यक्ति एवं वातावरण, ये सभी को प्रभावित कर रहता है। कभी वो सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी है। दोनों ही स्थिति में हमें संतुलित होना आवश्यक होता है, क्योंकि यह हमारी जिंदगी से जुड़ा है। जलवायु परिवर्तन भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम सभी इससे प्रभावित हैं। यही चुनौती हमें सजग भी करती है और सतर्क भी करती है। जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी चुनौती है हमारी जिंदगी की, और जिससे हम सभी उलझे हुए हैं, और इसको समाधान के लिए हर कोशिश की जा रही है। सभी तरह से कोशिश करने के साथ इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि महिला जो है वो प्रकृति की तरह घर की धुरी होती है, और जब घर की धुरी होती है तो उसका सजग होना ही अति आवश्यक होता है। यदि हम कहें कि महिलाओं में इसकी क्या भागीदारी है, जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी जो प्रकृति में जो विनाश हो रहा है, जो प्रकृति प्रभावित हो रही है, उसमें महिलाओं का क्या रोल है, क्या उसकी भूमिका है, तो ये कहा जा सकता है कि जो परिवर्तन किए जा रहे हैं इसमें महिलाएं अपने घर, अपने वातावरण को अलग तरीके से प्रभावित कर सकती है। यदि मैं बात करती हूँ कि यदि महिलाएं अपने किचन से ही इस कार्य को प्रभावित करती हैं या परिवर्तन में सहयोगी होती हैं, तो हम अपनी जीवन शैली को भी प्रभावित कर सकते हैं। यदि हम किचन में ही अपनी वस्तुओं को, प्रकृति को सजग करने में सहयोग दे सकते हैं, जैसे सब्जियां धोना, अन्य तरीके से जैसे पानी का वेस्ट करते हैं, तो उसकी जगह हम लोग कम से कम पानी का उपयोग करें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी का उपयोग करें। यह बहुत सरल और सामान्य तरीके से किया जा सकता है। यह भी किया जाए कि जीवन में कुछ छोटे छोटे से बदलाव किए जा सके, जो कि बड़े योगदान बन सकते हैं। यदि मैं बात करती हूँ कि हम घर में जो भी हमारे पास सब्जियां आती हैं, यदि उन सब्जियों को काटने के बाद जो बीज बच जाते हैं, उन बीज को धोकर सुखाकर हम वापस पौधों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये हमारा एक बहुत बड़ा किचन से सहयोग मिल सकता है। इसके साथ में हमारी सब्जियों से जो कचरा निकलता है, ये पत्ते निकलते हैं या वेस्ट जो निकलता है, उसको भी हम एक जैविक के रूप में, खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके साथ हमने हमेशा देखा है, हमारी दादी नानी, इनके पास जो ज्ञान था वो अपने आप में एक संपूर्ण ज्ञान कहा जा सकता है। वो प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानती थी। हम देखते हैं कि उन्हें मालूम था कि कौन सा पौधा कम पानी में बढ़ता है, कौन सा पौधे को पानी कम लगता है, कौन से पत्ते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो हमारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, कौन सा वो फल है जिसके लिए हम बगैर दवाइयों के भी हम उपयोग करके उसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से उनके पास शारीरिक, मानसिक और आंतरिक किसी भी रूप में फलों, सब्जियों, सूखे दाल, मसालों, इसकी सहायता से वो उपयोग करके हमारी शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकती थी। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि एक जो महिला होती है वो अपने वातावरण को या पर्यावरण को सहयोग करने में हमारी प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके भी सहयोग कर सकती है। हम अधिक से अधिक पेड़ लगाने की बात करते हैं और ये कार्य हम अपने किचन से भी शुरू किया जा सकता है, जैसा मैंने बताया था। इसके अलावा घर पर ही किचन गार्डन आज की जरूरत बन गया है, जिससे हम लोग एक अच्छा खाना, अच्छी सब्जियां और एक जैविक रूप से हमारे परिवार को दे सकते हैं। उनका स्वस्थ होना, उनका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना हमारी एक आवश्यकता बन गया है। हम सभी घर पर पुराने कपड़ों को अक्सर रख दिया जाते हैं, तो यदि हम उन कपड़ों का उपयोग करके बैग बनाए जा सकते हैं, उनका अन्य रूप से उपयोग किया जा सकता है, जिसके कारण हम प्लास्टिक को अपने से दूर कर सकते हैं, घर से दूर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें धातु के बर्तनों का उपयोग किचन में करें। प्लास्टिक का उपयोग हम नहीं करेंगे तो शायद हमारी जैसे मेडिकल फील्ड में कहा जाता है कि बीमारियों प्लास्टिक से विकसित होती हैं। इसके अलावा पानी का कंट्रोलिंग करना तो एक आवश्यक ही हो गया है। बिजली की बचत, महिलाओं के द्वारा बिजली की बचत जैसे दुरुपयोग किया जाता है, स्विच ऑन कर दिए जाते हैं। हम लोग यदि पर डे एनालिसिस करें तो पर यूनिट हम कंट्रोल करके एक बिजली को बचाया जा सकता है। अभी वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं सोलर सिस्टम्स के द्वारा बिजली विकसित की जा रही है। यदि हम सोलर यूटेंसिल्स का उपयोग करें या सोलर बर्तनों का उपयोग करेंगे तो वो भी हमारे लिए अति आवश्यक है, जो कि हमारी एक प्रकृति को बचाने में या वातावरण को सहयोग दे सकता है। हम यदि आज महिलाओं के नेतृत्व की बात करते हैं तो नेतृत्व की दृष्टि से महिलाएं अपने आप में एक सक्षम है, जो हमारे देश और समाज के लिए बहुत सहयोग कर सकती है वातावरण को शुद्ध करने में, साफ करने में। और बहुत सी सक्षम महिलाएं हैं, जैसे आज मैं बात करती हूँ महाराष्ट्र की एक गांव में, जहाँ पे महिला पंचायत के नाम से मशहूर है और वह महिला पंचायत ने प्रकृति से संबंधित या प्रकृति को बचाने से संबंधित वो सारे कार्य स्वयं करती हैं और अपने आप में एक आदर्श स्थापित करती है। इसी तरीके से अन्य स्टेट में भी हम प्रकृति को लेके बहुत ज्यादा महिलाएं अवेयर हैं और इससे संबंधित कार्य करती हैं। यदि हम पर्यावरण को बचाने के लिए सिर्फ हम सरकार या वैज्ञानिक इन्हीं को जवाबदार मानते हैं या इन्हीं से कहते कि सरकार के द्वारा ये सहयोग किया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए, पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, ये संभव नहीं है। यदि हम अपने वातावरण को बचा सकते हैं, एक महिला होने के नाते हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक उपहार दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे जीव जंतु जो हमारे मित्र हैं। पौधों के साथ मित्र हमारे जीव जंतु हैं और जो कि आज हमारी प्रकृति और पर्यावरण से प्रभावित होकर बहुत ज्यादा नष्ट हो रहे हैं, जिनकी जाति खत्म होती जा रही है, उनको भी बचाना हमारा एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम अपने बच्चों को शिक्षा के साथ ये संस्कार भी दें कि प्रकृति को बचाना या जीव जंतुओं की सहायता करना ये हमारा फर्ज बनता है। यदि महिला होने के नाते हम यदि ये कहते हैं कि हम पंच तत्व पर या पंच वस्तुओं पर विश्वास करते हैं जो प्रकृति के नियम के अनुसार है, हम यदि भारतीय संस्कृति की बात करते हैं जहाँ पे पूजन आराधना एक पंच तत्व के माध्यम से होती है, प्रकृति के माध्यम से होती है। हम पेड़ों की पूजन करते हैं, हम जानवरों की पूजन करते हैं, आंवला नवमी पर हम आंवले की पूजन करते हैं, तुलसी की पूजन करते हैं, वटवृक्ष की पूजन करते हैं, जो कि हमारी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण है, जिनकी आराधना करते हैं। ये आराधना सिर्फ एक दिन के लिए सीमित नहीं हो सकती। इस आराधना को हम यदि अपने दैनिक जीवन में इनकी रक्षा और सुरक्षा की को भी अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम एक प्रकृति को सहयोग दे सकते हैं। महिलाओं के द्वारा अपने बच्चों को जो संस्कार दिए जाते हैं, जिसमें हमारे एक घर के कार होते हैं, जिसके द्वारा अपनी संस्कृति, अपने देश, अपने विकास, अपने समाज के बारे में बताया जाता है, उसी तरीके से हमारी एक महिला होने के नाते या एक परिवार की विशेष सदस्य होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम पर्यावरण के बारे में या इस पर्यावरण से संबंधित, इससे विकास कैसे किया जाए, इसकी सुरक्षा के, यदि बचपन से बच्चे को ये संस्कार दिए जाए तो निश्चित रूप से हम इसकी रक्षा कर सकेंगे या इसमें हम एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमारे पर्यावरण रक्षा कवच बचाना होगा और हमारी ये विरासत जो मिली है इसको हमें सहजना होगा। यदि अब हम बात करते हैं कि एक नारी होने के नाते या एक महिला होने के नाते मैं अपने पर्यावरण को या मैं अपनी प्रकृति को कैसे सुरक्षित रखूंगी, तो ये मुझे आज से ही, अभी से ही प्रारंभ करना होगा ताकि मैं आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को उपहार दे सकूं। मैं नारी हूं, प्रकृति की आभारी हूं, पृथ्वी माँ की तरह सहनशील शक्ति हूं, प्रदूषण से माँ को बचाऊंगी, नदियों में बढ़ाकर शीतलता से माँ को नहलाऊंगी, हरियाली की चुनर माँ को मैं उड़ाऊंगी, पशु पक्षी को बचाकर माँ को संगीत का एक सुरीला वातावरण मैं बनाऊंगी। माँ, मैं एक नारी हूं, मैं इस वातावरण को बनाना या बचाना मेरा फर्ज है।
0: जलवायु परिवर्तन चुनौतियां और महिला भागीदारी, जी हाँ, डॉक्टर रागिनी माथुर की ये वार्ता अभी हमने सुनी और निश्चित रूप से हमारी सखियों ने ये निर्णय लिया होगा कि वो भी जलवायु परिवर्तन में अपनी भागीदारी जरूर निभाएंगी। होली आई रे, जी हाँ, मुकेश की आवाज़ में ये बहुत प्यारा सा गीत आपको सुनवा रहे हैं सखियों, सुनिए।

होली आई रे इस फिल्म का गीत सखियों हमने आपको सुनवाया। अब बात करते हैं रूपलावण्य की। जी हाँ सर, इस मौसम में देखिए बहुत चिपचिपा पसीना आना स्वाभाविक है क्योंकि बारिश होने के बाद धूप निकल आई है। ना जाने कितने उपाय हम कर रहे हैं सखियों, पर नतीजा कुछ भी हाथ नहीं आ रहा है। तो क्यों ना कुछ इस तरह से किया जाए जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। आप जानते हैं हमारे शरीर की चंद्र नाड़ी, जिसे ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं, सक्रिय कर लिया जाए अगर इसे तो शरीर में शीतलता बनी रहती है और गर्मी की वजह से पसीना कम आता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बहुत ही सरल तरीका है कि आप अपने लेफ्ट ईयर में यानी जो उल्टे हाथ वाला कान है उसमें रुई लगाकर हल्का सा अंदर की तरफ दबा कर रखें और फिर धूप में निकलिए या गर्मी में काम कीजिए। आपकी ईड़ा नाड़ी संतुलित रहेगी और शरीर में तापमान नियंत्रित रहेगा, ठंडक बनी रहती है जिससे पसीना कम आता है और हमारी जो पसीने वाली जो समस्या है ये दूर हो जाती है। सखियो कीजिएगा ये उपाय। फैमिली

करने वाली एक्सरसाइज है। बिना ताकत लगाए आप हल्की मूवमेंट और एक्शन के साथ किसी फिल्मी गाने पर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हल्की संगीत ध्वनि में एरोबिक्स करना हम सब के लिए मानसिक रूप से बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा है हमारी सखियों को। हाँ, जिनके घुटने की समस्या है, कमर का दर्द है या जिनको चक्कर आते हैं बार बार, तो एरोबिक्स करते समय भी आप थोड़ी सी सावधानियाँ रखें या किसी मतलब अच्छे गुरु या शिक्षक के सानिध्य में रहकर आप क्या बोलते से ये वज़न कम कर सकती हैं, एरोबिक्स का लाभ ले सकती हैं। एक गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ सखियों, सुनिए और उस पर एरोबिक्स के मूवमेंट लगातार करती रहें।

जी हाँ सखियों, एरोबिक्स के मूवमेंट आपने ज़रूर किए होंगे, और ये बताइएगा कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। जी हाँ, कार्यक्रम का समय अब हो रहा है ख़त्म, तो ये कहूँगी आपसे कि अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात ज़रूर करूँगी महिला सभा कार्यक्रम के माध्यम से ही। आपको बता दें, कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का। अब दें महिला सभा से संयोगिता जोशी को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सभा कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: जबलपुर की है, आरंभ में ये दादरा।

इस गारी गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे शोभना कश्यप के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कोकिला दत्ता के गाए कुछ भजन।

0: कबीर की इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे कोकिला दत्ता के गाए कुछ भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में सूरज का लिखा यह गीत था। लता मंगेशकर, उदित नारायण ने गाया था। फिल्म थी सातवां आसमां। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित जनजाति सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी व्यक्ति और समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए।
2: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
1: राष्ट्रपति आज ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगी और शाम की आरती में भी शामिल होंगी। इस दौरे में 21 जून को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 22 जून को कूनो नेशनल पार्क का दौरा भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के बाद कहा कि उनका प्रदेशागमन प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्रदेश के सफल चीता प्रोजेक्ट का अवलोकन करेंगी और सिकल सेल एनीमिया से निपटने की राज्य सरकार की रणनीति से भी अवगत होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैतूल में ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में राष्ट्रपति की भागीदारी से आध्यात्मिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता होने के बहुत करीब है और यदि भारत पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि पिछले साल अगस्त से इस योजना के अंतर्गत 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। पहली सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इस कार्यक्रम में 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम श्वास तक शत्रु के समक्ष शीश नहीं झुकाया और मातृभूमि के सम्मान के लिए उनका बलिदान भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। मुख्यमंत्री ने फ्लाइंग सिख और पद्मश्री प्राप्त मिल्खा सिंह को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान और विकसित भारत की पहचान है। इस अभियान के तहत जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। इस जीत के साथ भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट सर्च महाअभियान चला रहा है, जिसके तहत 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। इस अभियान में एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग और तीरंदाजी समेत कुल 21 खेल विधाओं के ट्रायल होंगे। ऑनलाइन पंजीयन 17 जून से शुरू हो रहा है और चयन प्रक्रिया 27 जून से आरंभ होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया नगर पालिका परिषद में जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पत्रकारिता के अध्येता एवं इतिहास लेखक विजय दत्त श्रीधर को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। गुना कलेक्टर ने स्कूल चले हम अभियान के दूसरे चरण के तहत पुरानी छावनी के PM श्री शासकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्रों से संवाद किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
3: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थन

0: करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू। शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों के माध्यम से भेजी पसंद हम पूरी करेंगे इस कार्यक्रम में। पहला पत्र शामिल कर रहे हैं हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफी इंदौर से हमें पत्र भेजते हैं। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंडा बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनर्थ रैकवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रैकवार, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय की। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमारी संचित वायाल मैताला से प्रथमेश देशमुख,

प्रणाली देशमुख करडा रिसोड से सानवी देशमुख और सर्वद्र देशमुख, डोंगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनामिका अनिष्का और तन्मय गजबिये।

इसी गीत को सुनना चाहा है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव ने। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव ने। विश्वात्मा फिल्म का गीत साधना सरगम का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने बोल लिखे हैं, विजू शाह ने संगीत बनाया।

कार्यक्रम में अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं कालीचरण यादव, दीपक यादव, चांदनी यादव और उर्मिला यादव की ग्राम संदलपुरा से। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप की। कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुजतबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की। सुनना पसंद किया है सौदागर फिल्म का गीत, कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर ने इसे गाया है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत पेरे।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं आशा रेडियो श्रोता संघ के मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर राही, सरिता गवहाणकर सिद्धांत, प्रिंस और एकांश गवहाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित ध्वनि गवहाणकर परी की, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले की, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक प्राची और तनु करमरकर की, तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई परू, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारेकर की, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तड़वी, आरिश असलान, यूनुस तड़वी की, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज बिटिया, रोजमीन तैमूर और तड़वी परिवार के सदस्य। एक लड़का एक लड़की फिल्म का गीत कुमार सानू और साधना सरगम ने गाया है, मजरू ने बोल लिखे हैं, आनंद मिलन की धुन है।

कार्यक्रम में अगली ख्वाहिश शामिल कर रहे हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी और सौरभ शर्मा की। शाइना और निवान भी इनके साथ हैं। ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढाकसे की। रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति माखीजा, छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से ये पत्र हमें भेजता है। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, अरुण चौरसिया हमें ये पत्र भेजते हैं। और कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली की। प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल और प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा की। दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गीत अनुराधा पोडवाल का गाया हुआ, समीर के बोल है, नदीम श्रवण ने धुन बनाई है।

0: अनुराधा पौडवाल के गाए फिल्म दिल है कि मानता नहीं के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के बाद कहा कि राष्ट्रपति प्रदेश के सफल चीता प्रोजेक्ट का अवलोकन करेंगी और सिकल सेल एनीमिया से निपटने की राज्य सरकार की नीति से भी अवगत होंगी। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज द्वारा आयोजित जनजाति सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। प्रदेश में मानसून 22 से 24 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। प्रदेश में मानसून से पहले गर्मी का असर भी बढ़ता दिख रहा है और अगले 3 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। श्रोताओं, शाम 6:30 पर आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर होगा, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की होगी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। रात्रि 8:00 समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत आज सुनिएगा विरासत। आपकी फरमाइश कार्यक्रम रात्रि 10:00 आप सुनेंगे और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा SL कंडारा का वायलिन पर बजाया राग यामिनी। आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी का प्रसारण शाम 7:21 पर होगा। इसके अंतर्गत डॉक्टर अनामिका पंडे से ग्रामीण महिलाओं के विकास में अग्रसर शासकीय योजनाएं विषय पर की गई भेंटवार्ता प्रसारित करेंगे। ये थे मुख्य आकर्षण सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 3:01:33 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण समाप्त होता है। शाम 5:00 हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः हाजिर होंगे। इस बीच हमारा प्रसारण DTH पर जारी है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त माधुरी
1: और मैं हूं अपर्णा।
2: तो दोस्तों, आज है दिन गुरुवार का और एक बार हम फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी लेकर। और क्योंकि आज गुरुवार है तो आज का स्पेशल सेगमेंट होगा सफलता की कहानी, जिसे सुनने के लिए आप बहुत बेताब भी होंगे, हम जानते हैं। इसी के साथ हम बहुत सारी और भी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले आज के प्रश्न।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे 2 प्रश्न पूछते हैं और अंत में उम्मीद करते हैं कि आप उनका जवाब यानी कि जो उन प्रश्नों का उत्तर है वो ढूंढ के रखेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि नीली नदी किस महाद्वीप में बहती है,
1: और आज का दूसरा प्रश्न है भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है। तो दोस्तों, आप इन दोनों ही सवालों के जवाब ढूंढ कर रखिए, नोट करके रखिए और अंत में जब हम इसके उत्तर आपको देंगे तो उससे मिलाइएगा। उसके पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुरीले गीत के साथ।

आया।

0: तो दोस्तों, आज जिस तरह के से अपर्णा ने बताया है कि आज गुरुवार है, हम सफलता की कहानी तो करेंगे, लेकिन साथ में हमें आपसे बहुत सारी बातचीत भी करनी है। तो उसकी शुरुआत क्यों ना हम अभी कर लें अपर्णा।
1: बिल्कुल।
0: तो अपर्णा, तुम मुझे बताओ, कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि हम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा अनजाने में खो देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, तुम बताओ क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है?
1: बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम माधवी। और ये बहुत छोटा लेकिन बहुत गंभीर विषय भी है। हम या तो बीते हुए कल की यादों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में, और इसी बीच आज हमारे हाथों से निकल जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। कल की गलतियों पर सोचते सोचते कई लोग अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं, जबकि सच तो ये है कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता।
1: और भविष्य, वो भी तो अभी लिखा ही नहीं गया है। वो एक खाली पन्ने की तरह है जिस पर आज किए गए काम की कहानी लिखने वाले हैं।
0: मुझे हमेशा ये बात बहुत प्रेरित करती है कि हमारे पास वास्तव में सिर्फ आज ही है। ऑल वी हैव इज द प्रेजेंट। यही वो समय है जब हम कोई निर्णय ले सकते हैं, कोई नया कदम उठा सकते हैं और अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल सही। और दोस्तों, सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन ये सोचकर बैठे कि मैं कल से मेहनत शुरू करूंगा, तो शायद वो दिन कभी आए ही ना।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैव नो फ्यूचर, यानी कि जो कल के बारे में सोच के बैठते रहते हैं, उनका कल कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े लक्ष्य भी एक दिन में पूरे नहीं होते, वे हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होते हैं।
1: और यही आज की सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन में पूरी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक दिन में मिला गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है।
0: बिल्कुल सही बात कही है तुमने। ये बात तो सच में दिल को छू कर जाती है। मुझे लगता है कि वर्तमान में जीना भी एक बहुत बड़ी कला है जो सब लोग को नहीं आती।
1: बिल्कुल सही माधवी। और आज की दुनिया में लोग इतने ज्यादा बिजी है कि वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं, आज के दिन को एंजॉय करना भूल जाते हैं। चाय पी रहे होते हैं तो अगले काम की चिंता करते हैं, और छुट्टियों में भी ऑफिस के बारे में सोच रहे होते हैं।
0: और फिर कहते हैं कि खुशी नहीं मिलती, हम खुश नहीं हैं, जबकि खुशी तो अक्सर उन्हीं पलों में छिपी होती है जिन्हें हम जल्दबाजी में अनदेखा कर देते हैं।
1: हाँ, आज का सूर्योदय, परिवार के साथ बिताया गया समय, दोस्तों की हंसी, कोई नई सीख, ये सब वर्तमान के उपहार हैं।
0: और मुझे तो ये भी लगता है कि जो लोग आज का सम्मान करना सीख लेते हैं ना, वो जीवन को ज़्यादा संतुलित और खुशहाल तरीके से जी पाते हैं।
1: और भविष्य को लेकर भी अधिक आत्मविश्वासी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मैं हर शाम खुद से यही पूछूंगी माधवी अब, कि क्या मैंने आज का दिन पूरा जिया।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और कल एक याद है, आने वाला कल एक संभावना है, लेकिन आज एक उपहार है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ सब इस बात को सुने और इसको इम्प्लीमेंट करें कि वर्तमान को अपनाएं, क्योंकि यही यहीं से आपका बेहतर भविष्य है ना, वो शुरू होता है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो दोस्तों, जैसे कि हमने बात की थी, आज है गुरुवार और हम आज का स्पेशल सेगमेंट आपके लिए ले आए हैं, जो कि है सफलता की कहानी। तो आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे कलाकार से जो अपनी विधा में सतत प्रयासों से बहुत सफलताएं हासिल कर रही है। उनका नाम है प्रांजलि वेरुलकर। प्रांजलि कथक नृत्य की, रायगढ़ घराने की बहुत ही अच्छी नृत्यांगना है, सफलता की ओर सतत अपने कदम बढ़ा रही है। और प्रांजलि से आज बातचीत की है अनुभूति निगम ने।
4: तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा सेगमेंट है वो बहुत ही स्पेशल है, जिसका नाम है सफलता की कहानी, जिसमें हर बार हम प्रयास करते हैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे लोगों की स्टोरीज शेयर करने का, कुछ ऐसे युवा साथियों की कहानी बताने का जिनसे आप सभी प्रेरणा ले सके और किस तरह वे उनकी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह करियर में आगे बढ़ रहे हैं, उनसे आप सभी एक अच्छी इंस्पिरेशन ले सके। और इसीलिए आज की जो हमारी सफलता की कहानी है वो प्रांजलि वेरुलकर की है। आज प्रांजलि जी हमारे साथ हमारे युववाणी कार्यक्रम में आकाशवाणी इंदौर में यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रांजलि जी रायगढ़ घराने की सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना गुरु श्रीमती मोहिनी मोघे जी की शिष्या हैं। साथ ही प्रांजलि दूरदर्शन बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के मंचों पर प्रांजलि ने विजेता के रूप में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है और कई सारे बड़े मंचों पर अपनी जो कला है उसको बहुत सुंदरता के साथ बखूबी तरीके से निभाया है। तो और हम प्रांजलि के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए उनकी आवाज सुनते हैं। प्रांजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका युववाणी कार्यक्रम में और आकाशवाणी इंदौर में।
5: नमस्कार। आकाशवाणी इंदौर में मुझे आज आने का मौका मिला और अपनी बात रखने का मौका मिला, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।
4: थैंक यू। तो आप प्रांजलि एंड में हमें कहिएगा, लेकिन उससे पहले प्रांजलि, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप आपकी आवाज में हमारे श्रोताओं को बताएं कि आप अभी क्या करती हैं और किस तरह अभी अपनी फील्ड में, करियर में आगे बढ़ती हैं।
5: जी, तो मैं फिलहाल इंग्लिश लिटरेचर में PhD परस्यू कर रही हूँ, बट क्योंकि कथक के साथ मेरा बचपन से ही जुड़ाव रहा है तो मैं जबलपुर में अभी कथक में ही ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ। और जो यंग बच्चे अभी आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा कल्चर को और समझे, इंडिया की लेगेसी को थोड़ा और समझे, और इसीलिए मैं इसी क्षेत्र में अपना जितना भी हो सके थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ।
4: क्या बात है प्रांजलि, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, किस तरह कला को निखारता है, किस तरह कथक उसका एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। तो आपने किस तरह ये जर्नी शुरू की, किस तरह आपकी इस जर्नी की शुरुआत हुई, कथक आपने कैसे सीखा, आपकी रुचि इसमें कैसे बढ़ी, हम ये जानना चाहेंगे।
5: बिल्कुल, बचपन से ही कला के क्षेत्र से मेरा एक अलग तरीके का लगाव रहा है। उसका रीजन ये है कि मेरा जो पूरा परिवार है वो कहीं ना कहीं कला से ही जुड़ा हुआ है।

0: मेरे पिताजी पेंटिंग करते हैं, मेरे चाचा म्यूजिशियन हैं, तो घर पर एक माहौल हमेशा से रहा था। तो म्यूजिक सुनते सुनते, पेंटिंग्स देखते देखते, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने कथक को लेकर एक इंटरेस्ट अपने अंदर डेवलप कर लिया। बचपन से डांसिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन ये नहीं पता था कि क्लासिकल क्या चीज होती है या इसमें कैसे डांस को ढाला जा सकता है और कैसे डांस से अपने जिंदगी में डिसिप्लिन को ढाला जा सकता है, या ये भी नहीं पता था कि इसमें करियर भी ऑप्शन हो सकता है। काफी टाइम बाद मैंने इस फील्ड को दोबारा एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो एकेडमिक्स के साथ साथ कथक में भी थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया, और बाद में मुझे लगा कि मुझे शायद इससे बहुत ज्यादा लगाव है और मैं इसी में आगे काम करना चाहती हूँ। और मैंने देखा कि बहुत नए नए कलाकार आज की डेट में आ रहे हैं और बहुत सीरियसली इसको एज करियर ऑप्शन समझ रहे हैं और इसी में आगे बढ़ भी रहे हैं। तो इन सबको देखकर मुझे प्रेरणा मिली और मैंने सोचा कि मैं इसी में आगे योगदान देना चाहती हूँ।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है प्रांजलि कि आपको इस विधा में रुचि है। और जब भी हम इस तरीके के डांस परफॉर्मेंस देखते हैं जो इंडियन कल्चर से जुड़े हो, और साथ ही हम शास्त्रीय नृत्य जब भी देखते हैं, जाहिर सी बात है कि सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं बल्कि वहाँ सभागृह में जो भी बैठा रहे ऑडियंस में, उन्हें काफी अच्छा लगता है और बहुत ही सुंदर अनुभव हम सभी को मिलता है इस तरीके के इंडियन कल्चर से जुड़े डांस परफॉर्मेंसेस देखकर। और हम ये भी देख रहे हैं कि आपने कई बड़े मंचों पर खुद को रिप्रेजेंट किया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी कम उम्र में ही आपने कई तरह के मंचों पर, जैसे युवा महोत्सव में आपने बहुत अच्छी तरीके से यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करा, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करा, और साथ ही देश के विभिन्न बड़े महाविद्यालयों में और बड़े मंचों पर भी आप अपनी परफॉर्मेंस देते आई हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, हम जानना चाहेंगे।
0: तो मेरे इस कथक की पूरी जर्नी की शुरुआत तो बालाघाट से हुई है। वहां पर जो मेरी पहली गुरु रही है, श्रीमती वाणी श्रीवास जी, उन्होंने मुझे कथक की सबसे शुरुआती तालीम दी थी। जब मैं जबलपुर आई और श्रीमती मोहिनी मोघे जी से जुड़ी, तो उन्होंने मुझे मंच को लेकर कई सारी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं या तकनीक है, उनसे उन्होंने मेरा परिचय करवाया। एक बहुत ही अच्छी बात मेरी गुरु ने कही कि मंच पर चढ़ने से पहले कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, थोड़ा बहुत नर्वस हो ही जाता है। ये उसकी ईमानदारी का कहीं ना कहीं प्रमाण है। पर साथ ही साथ वो ये कहती है कि मंच से डरो, पर इतना नहीं डरो कि मंच से अपना नाता टूट जाए। तो जब भी हम मंच पर जाते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो सामने दर्शक दीर्घा में भी बैठे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कला के प्रेमी हैं, साथ में आपसे जुड़ना चाहते हैं कला के माध्यम से। तो ये बात हमेशा ध्यान में रख के कोई भी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। बस ये सब छोटी छोटी चीजें सीखते सीखते उनके साथ कुछ मंचों पर प्रदर्शन किया, कई सारे बड़े बड़े महोत्सवों में उन्हें बुलाया जाता था, तो मैं उनके साथ उनके ग्रुप में परफॉर्म किया करती थी। धीरे धीरे उन्होंने मुझे थोड़ी और बारीकियां सिखाई इस विधा की, और फिर मैंने सोलो परफॉर्मेंसेस देना भी शुरू किया। जब स्टेज की बात आती है, तो केवल आप नहीं होते बल्कि पूरी टीम मिलकर काम कर रही होती है, तो उसके पीछे निर्देशन होता है आपके गुरु का, साथ में संगत कलाकार होते हैं जिनकी संगीत में संगत होती है, वाद्य यंत्रों की संगत होती है, और उसके बाद फिर आपका नृत्य उसके ऊपर। तो इन सब का जो समावेश होता है, उसके बाद जो निखर कर आता है, वो मंच प्रदर्शन का आखिरी रिजल्ट सब दर्शकों के सामने होता है। तो बस यही सीखते सीखते पहले छोटे छोटे स्टेज, छोटे छोटे मंचों से शुरुआत की बचपन में, धीरे धीरे अपने गुरु के सानिध्य में जितना हो सका उतना आगे बढ़ती गई।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही प्रांजलि। और यही एक क्वालिटी होती है एक अच्छे कलाकार की, एक अच्छे आर्टिस्ट की, कि वो किस तरह अपनी जो कला है उससे पर्सनली भी बहुत कुछ सीखता है, और स्टेज पर जाते समय जो आप निभाते हैं वो भी बहुत कुछ सीखता है, जो रोल आप निभाते हैं उसके बारे में भी बहुत कुछ सीखता है। तो प्रांजलि, अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इन सभी प्रतिष्ठित मंचों पर परफॉर्म किया है, जब आप मंच पर होती हैं, जब स्टेज पर होती हैं, तो कोई ऐसा यादगार स्टेज आपके जीवन में अभी तक रहा हो जिसे आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें, या कोई प्रस्तुति ऐसी रही हो, कोई परफॉर्मेंस ऐसा रहा हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो और जिससे आपको कुछ सीखने को मिला या कुछ अच्छा अनुभव आपके साथ हुआ?
0: बिल्कुल, एक तो कला की सबसे अच्छी बात है कि हर मंच, हर परिस्थिति, हर कंपटीशन या हर परफॉर्मेंस आपको कुछ ना कुछ सिखाता है और एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस देता है। पर यहाँ पर मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगी अपने बचपन के परफॉर्मेंस का। जब नई नई शुरुआत की थी डांस सीखने की, तब क्लासिकल का इतना तो नहीं पता था, पर डांस करना बहुत पसंद था। स्टेज फियर नहीं था बचपन से ही, क्योंकि शायद पहले से ही अंदर वो इनबिल्ट था, फैमिली के सभी लोगों को स्टेज पर कभी ना कभी परफॉर्म करते देखा ही था, तो मुझे कुछ ऐसा लगता था कि मंच यानी मेरा दूसरा घर है, तो मैं वहां जाके काफी एक्सप्रेसिव हो जाती थी, चाहे माइक पर बोलना हो, चाहे परफॉर्म करना हो, चाहे गाना गाना हो। तो शुरुआत यहीं से हुई। बचपन में एक परफॉर्मेंस के टाइम पे मुझे याद है कि मैं काफी छोटी थी, पर टेप रिकॉर्डर उस वक्त चलता था, कैसेट्स होती थी जिसमें आप गाने डालकर फिर आप लेके जाके, टेप रिकॉर्डर भी कभी ना कभी घर से लेके जाना पड़ता था। तो वो गाना बीच में बंद हो गया और उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई। उस वक्त मैं स्टेज पर, सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं शायद स्टेज पर ही कमर पे हाथ रख के खड़ी हो गई। बहुत देर तक मैं खड़ी रही और कुछ वक्त बाद फिर एक नया टेप रिकॉर्डर अरेंज किया गया और फिर पूरा पूरा पूरा जो गाना था फिर से चलाया गया और फिर से मैंने अपनी प्रस्तुति दी। जब मैं आज उस वाकये को पलट कर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तब मैं एकदम बच्ची थी, तो सुलभ मन से मेरे मन के अंदर बस इतना आया कि ये बस मेरा मंच है, मुझे अपनी प्रस्तुति देनी है और वापस जाना है। जब बड़े होते हैं तो हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फिल्टर्स आ जाते हैं, डर आ जाता है, नर्वसनेस आ जाती है, जजमेंट दिमाग में आ जाता है कि अब यहाँ अगर खड़े रहे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या ये परफॉर्मेंस बीच में रुक गया तो कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो शायद बड़े हो जाने के बाद मैं उस परिस्थिति को उस तरीके से नहीं, परिस्थिति का सामना कर पाती, पर अभी भी कभी कभी मैं इंस्पिरेशन के लिए अपने उस वाकये को देखती हूँ और सोचती हूँ कि बिल्कुल उसी मन के साथ आज भी हिम्मत से मंच पर चढ़ पाऊँ। तो एक उस इंसिडेंट ने मेरा एक नजरिया बदला है और आज भी जब मैं मंच पर चढ़ती हूँ, कई सारी चीजें होती हैं, कभी तकनीकी खराबी आ जाती है, कभी संगतकारों के साथ थोड़ा बहुत, क्योंकि 3-4 लोग साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होते हैं, तो काफी सारे चांसेस होते हैं कि कभी कुछ मिस हो जाए। और फिर क्लासिकल में बहुत सारी बारीक बारीक चीजें होती हैं, सम पर नहीं आना, कहीं ताल का चूक जाना या लय का चूक जाना, तो उसमें जो नर्वसनेस डेवलप हो जाती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अब मंच से उतर जाना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी गलती हो गई है या ब्लंडर हो गया है। तो उस वक्त ये वाकया मैं तुरंत अपने दिमाग में लेकर आ जाती हूँ और सोचती हूँ कि जब उस वक्त कर लिया तो शायद दोबारा इसको फिर उसी तरीके से उसका सामना कर सकते हैं।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई और जिस तरह से आप बता रही हैं वो क्लियर ये बताता है हम सभी को और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी कि किस तरह ऐसी जो मेमोरीज रहती हैं वो हमारे खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी एक अच्छी इंस्पिरेशन साबित हो सकती है। तो प्रांजलि, अब मेरा ये सवाल है क्योंकि हमारे जो युवा श्रोता हमें सुन रहे हैं, जो अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और अलग अलग करियर पाथ्स चुन रहे हैं, उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? जो अगर अच्छा प्रांजलि, जो हमारे युवा श्रोता हमें सुन रहे हैं जो अभी अपने करियर ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं या कुछ नया करियर ऑप्शन तलाश रहे हैं और जिन्हें डांस का शौक है बहुत ही, है कि कई लोगों में असाधारण कला भी होती है, जो जिस तरह आप आगे बढ़ी हैं नृत्य में उसी तरह कई लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो उन्हें आप क्या सजेशंस देना चाहेंगी कि वे किस तरह इस फील्ड में, नृत्य की फील्ड में भी एक अच्छा करियर ऑप्शन चुन सकते हैं और इसमें आगे भी बढ़ सकते हैं और इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रतिष्ठा पाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वो इससे एक अच्छी अर्निंग भी कमा सकते हैं, ये आप हमें बताइए।
0: जी बिल्कुल। तो लाइफ के कई पॉइंट्स पर मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पर मैं दो राहों के सामने खड़ी थी कि यहाँ आप कंप्लीटली एकेडमिक्स को चूज कर लूँ या फिर कंप्लीटली अपनी आर्ट की फील्ड में आगे बढ़ने का सोचूं, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी में होता है कि एकेडमिक्स को थोड़ी ज्यादा तवज्जो मिलती है। तो मेरे भाई ने एक बार हंसते खेलते मुझे एक बात कह दी थी जो मेरे जहन में अभी तक अटकी है कि आपके जीवन का पर्पस तब तक पूरा नहीं हो रहा अगर कोई काम आपके जीवन जीने के आड़े आ रहा है। तो मुझे ये बात तब अचानक हिट किया कि अगर मैं काम कर रही हूँ और केवल ये दिमाग में लेकर काम कर रही हूँ कि एक कोई हॉबी है जिसे मैंने लाइफ में पीछे छोड़ दिया है या मैं उसे अभी मिस कर रही हूँ, या कहीं ना कहीं मेरे मन में ये रिग्रेट है कि उसे मैं अपना वक्त नहीं दे पा रही हूँ या फिर से उस दिशा में मैं जा नहीं पा रही हूँ, या फिर मुझे कभी टीवी देखते हुए या यूट्यूब पर वीडियोज देखते हुए दुख होता है कि काश ये मैं कर रही होती, तो ऐसे भी आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है जहां पर आप जो कर रहे हैं उसमें आपको खुशी ना मिल रही हो। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी हॉबी को बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ देखूंगी, उसके लिए एक नया नजरिया अपनाऊंगी, उसमें उस क्षेत्र में मैं क्या सीखना चाहती हूँ, क्या हासिल करना चाहती हूँ, और उस क्षेत्र को मैं अपने हिसाब से, अपने तर्ज पर क्या दे सकती हूँ इसके बारे में सोचूंगी। तो बस वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मैंने कम्प्लीटली कथक को चूज किया, उसमें आगे बढ़ना चूज किया, और उसके बाद दो तीन कुछ मंच प्रदर्शन या

0: जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो सिर्फ अपने एकेडमीज डालकर नहीं आगे बढ़ना चाहते, या केवल परफॉर्म करके नहीं आगे बढ़ना चाहते, वो चाहते हैं कि अपने आर्ट के थ्रू मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस की तरफ कुछ काम करे, या फिर आर्ट थेरेपी की तरह उसको ले, कम्युनिटी बिल्डिंग के तौर पर उसको देखे। यहाँ फोक कल्चर की बात करते हैं तो फोक कल्चर का मेन मोटिव ही ये होता है कि सभी लोगों को साथ में रखना, किसी सोशल इश्यू को उसमें प्रेजेंट करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट आपको कई सारे ऐसे ऑप्शंस देते है जहाँ पे आप समाज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सिर्फ अर्निंग की बात नहीं है, अगर आपका ऐसा कोई और भी उद्देश्य है जिससे आप समाज में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, तो कला उसके लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। फिर चाहे आप पेंटिंग की बात करें, चाहे म्यूजिक की बात करें, चाहे आप डांस की बात करें। और डांसर्स के लिए तो आजकल एजुकेशन सेक्टर में भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप आगे जाके इसको आर्ट थेरेपी की तरह देख सकते हैं, या फिर आप पर्सनली भी इससे बेनिफिट हो सकते हैं, आप एक अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, और आप अपने कल्चर के बारे में बच्चों में भी अवेयरनेस, या जो इससे जुड़े हुए हैं या इस फॉर्म को सीखना चाहते हैं, उनके बीच भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कला समाज में जिस तरह आप सुधार लाना चाहते हैं उसका एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। बहुत अच्छा लगा प्रांजलि आपसे बात करके, आपकी इस अद्भुत कला के बारे में जानकर, और निश्चित तौर पर हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं वो भी आपसे ये प्रेरणा ले सकते हैं। और सिर्फ नृत्य ही नहीं, लेकिन किसी और विधा में भी, अगर किसी और फील्ड में भी वो आगे बढ़ते हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि आप जैसे युवा साथियों से इंस्पिरेशन लें और इसी तरह आपकी सफलता से उन्हें प्रेरणा मिले, यही हमारा उद्देश्य रहता है। तो एक बार फिर से प्रांजलि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और कई सारी यादें भी ताजा हो गई, और काफी कुछ मुझे खुद भी समझ आया कि हाँ शायद मैं सही दिशा में आगे जा रही हूँ। तो इस
1: बिल्कुल,
0: एक्सपीरियंस के लिए थैंक यू।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रांजलि, इसी तरह आप आगे बढ़ती रहें। और अब वक्त हो चला है एक गीत का, तो बताइए कि आज आकाशवाणी इंदौर के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मुझे एक गाना भाग मिल्खा भाग मूवी से बहुत पसंद है, वो मूवी अपने आप में काफी इंस्पिरेशनल है, तो मैं चाहती हूँ कि ओ रंगरेज उस फिल्म का एक ट्रैक अगर आप सुना दे तो।
1: ठीक है, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अपर्णा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आजकल लोग पहले से ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा परेशान भी दिखाई देते हैं?
1: बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है माधवी। मतलब मैंने कई बार देखा है कि बाहर से तो सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन बहुत से लोग अंदर ही अंदर टेंशन, चिंता और कई सारी इमोशनल बैगेज से जूझ रहे होते हैं।
0: और सबसे मुश्किल बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं हमेशा दिखाई नहीं देती। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर हम ये नहीं समझ सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है।
1: बिल्कुल ठीक। और कई लोग अपनी परेशानियों को छुपा कर भी रखते हैं, वे अपने काम करते करते करते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन अंदर से बहुत थके हुए महसूस करते हैं।
0: और ये भी है कि आज की तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी में पढ़ाई, करियर, सोशल मीडिया और रिश्ते, ये सब भविष्य की चिंता में लोगों को काफ़ी दबाव डालने लग गए हैं।
1: बिल्कुल। और लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना, ये भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग अक्सर दूसरों की सफलताएं देखते हैं, अपनी प्रगति को कम आंकने लगते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, जबकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन जब मन पर दबाव पड़ता है तो उसका असर हमारे व्यवहार पर भी दिखने लगता है।
1: कभी कभी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, लोगों से दूर रहने लगता है। पहले जिन चीजों में उसे खुशी मिलती थी, जिसमें उसका मन लगता था, या वो अब वो उसे बहुत ज्यादा चिंतित करने लगी है, या वो उससे दूर भागने लगता है।
0: और ऐसे समय में आसपास के लोगों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपर्णा।
1: बिल्कुल ठीक माधवी। कई बार किसी को सलाह दे देने से या उससे थोड़ी सी बातचीत कर देना बहुत ज़रूरी होता है। जब या इतना ही काफ़ी है कि आप सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से सुन लो। जब कोई महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है, तो उसका बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है।
0: और हमें जल्दी जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। किसी के व्यवहार के पीछे कोई ऐसी परेशानी हो सकती है जिसके बारे में हमें पता ही ना हो।
1: बिल्कुल। और थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी संवेदनशीलता और थोड़ी सहानुभूति किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है।
0: और जब बात खुद की मानसिक सेहत की हो, तो हमें अपने मन को भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए, अपने मन की भी देखभाल करनी चाहिए, उतनी ही देखभाल करनी चाहिए जितनी हम हमारे शरीर की करते हैं।
1: बिल्कुल। जैसे हम बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मानसिक रूप से परेशान होने पर भी हमें किसी काउंसलर या डॉक्टर की ज़रूरत लेनी चाहिए।
0: छोटी छोटी आदतों से हम मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, जैसे नियमित सुबह सैर पर जाना, योग करना, या मन को शांत और संतुलित रखने में मदद के लिए कुछ अच्छे गीत सुन लेना, किताबें पढ़ना, चित्र बनाना, बागबानी करना, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ करना जो आपके मन को शांति देती हो।
1: बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि रोज़ की आदत है। जब हम अपने मन का ख्याल रखते हैं, तो जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ भी पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। तो चलिए दोस्तों, आपके इस समय को और खूबसूरत बनाते हैं और सुनाते हैं आपको अगला गीत।

0: तो दोस्तों, ये था आज का युवावाणी कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का सफलता की कहानी सेगमेंट अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। लेकिन जाने से पहले अपर्णा, क्यों ना हम प्रश्नों के उत्तर देते हुए जाएं हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल माधवी, तो बताओ आज के हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या था।
0: तो जो हमारा पहला प्रश्न था वो ये था कि नीली नदी किस महाद्वीप से बहती है, और इसका उत्तर है अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका।
1: और आज का दूसरा प्रश्न था कि भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है, तो उसका उत्तर है कन्याकुमारी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अनुमति चाहेंगे। मैं अपर्णा
0: और मैं माधवी,
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के आरंभ में लीजिए सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, जिसे आशा भोसले ने गाया है। आर डी बर्मन का संगीत है और फिल्म का नाम है अनामिका।

0: लीजिए अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत, जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी है। इसकी धुन बनाई है आरडी बर्मन ने और फिल्म का नाम है पड़ोसन।
1: Thank you.

बद्दूर भाई बद्दूर, अब जाएंगे कितनी दूर। भाई बद्दूर भाई बद्दूर।

0: बस्तूर भाई बस्तूर अब जाएंगे कितनी दूर।
1: फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में गुलशन बावरा का लिखा हुआ ये गाना। इसका संगीत आर डी बर्मन ने दिया है और फिल्म का नाम है जवानी।

इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोता, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओ, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा

0: लिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते, जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहां तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्यौहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्वविख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
0: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप।

0: को जानती हूँ। घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो?
1: हाँ?
0: मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
0: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया, तो मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं।
0: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
0: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
1: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
1: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
1: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
0: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
1: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
0: सेठ, मुझे देर हो रही है।
1: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
0: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
1: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
3: जी मालिक।
2: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
1: हाथ से निकल गई।
2: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
0: माँ
2: ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
4: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा। ना, ना, ना।
2: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
4: चुप, चुप, चुप, चुप, चुप, चुप, चुप, चुप, चुप।
2: बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा।

लीजिए अब प्रस्तुत है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बैतूल का योगदान है और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किया जा रहा है।

0: श्रोताओं, आज बैतूल नगर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जिला प्रशासन और ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त प्रयासों से आध्यात्मिक जागृति से आदिवासी समाज का सशक्तिकरण इस विषय पर महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके, जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल तथा विधायक बैतूल श्री हेमंत खंडेलवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की हेलीपैड पर अगवानी की। तत्पश्चात कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति का काफिला समारोह स्थल पर पहुंचा। आयोजन स्थल पर श्वेत भव्य वर्षारोधी मजबूत पंडाल लगाया गया था, जिसमें लगभग 4000 लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी। सभी के प्रवेश हेतु अलग अलग प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए थे। सुरक्षा कर्मी सघन जाँच और एंट्री पास देखकर ही लोगों का प्रवेश सुनिश्चित कर रहे थे। मंच पर विशेष अतिथियों के बैठने की सुरुचिपूर्ण व्यवस्था की गई थी। यहां पहुंचकर महामहिम द्वारा कार्यक्रम स्थल पर वृक्षारोपण एवं ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ सदस्यों के साथ फोटो सत्र भी पूरा किया गया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ स्थानीय संस्कृति और विकास की झलक भी देखने को मिली। यहाँ बैतूल की अनूठी स्थानीय कला, हस्तशिल्प और जनजातीय विरासत को प्रदर्शित करती हुई विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। साथ ही वन विभाग द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण, वनोपज और जनजातीय समाज के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों को जीवंत रूप से दिखाया गया था। कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के गायन से हुआ। फिर मंच पर विधिवत दीप प्रज्वलन किया गया तथा मंच पर उपस्थित सदस्यों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी का शॉल और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इसके बाद पीके मंजू दीदी, संचालक बैतूल मध्य प्रदेश, द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया।
1: आज हम सभी के लिए, विशेष बैतूल वासियों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, बहुत खुशियों का दिन है। मैं बताना चाहती हूँ, आज से 2 साल पहले मैंने एक छोटा सा सपना देखा था। सपना तो बहुत बड़ा था, दिल और दिमाग की जंग शुरू हो गई थी। दिमाग ने कहा था असंभव, लेकिन दिल ने कहा था संभव। और इतनी इन खुली आंखों से मैंने जो सपना देखा था, आज वो सपना हम सबके सामने साकार हो रहा है।
0: इसके बाद प्रस्तुत स्वागत नृत्य ने सभी का मन मोह

0: इस अवसर पर जोनल संचालक मध्य प्रदेश बी के शैलजा दीदी ने कहा,
1: आज हम सभी बहुत सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक जागृति।

0: द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण। आदिवासी समाज सदैव से ही प्रकृति का रक्षक रहा है। आप में एकता और सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। आपकी जड़ी बूटियाँ जीवन दान देने वाली हैं। जड़ी में दवा और श्रद्धा में दुआ, ये कहावत भारतीय संस्कृति की आस्था और ईश्वर में विश्वास का परिचायक है। हमारे आदिवासी भाई बहनों की ये परंपरा कि हर शुभ अवसर पर नीम, महुआ, पीपल, बरगद जैसे वृक्षों को रोपने की, इन्होंने ही जंगलों को जीवित रखा हुआ है। जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखना और उनके गहरीकरण के प्रति जागरूक रहना, ये आपका दिव्य कर्तव्य रहा है। ऐसे आदिवासी समाज के जागृति क्या केवल भौतिक विकास द्वारा संभव है या इसके लिए आध्यात्मिक जागृति आवश्यक है? आध्यात्मिकता हमें स्वयं के अर्थात इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा के मूल गुणों से परिचित कराती है। मूल गुणों में शक्ति है।
1: कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री दुर्गादास विके ने अपने उद्बोधन में जनजातीय समुदाय हेतु सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की।
2: आज बैतूल की पुण्य धरा पर हम सभी एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बन रहे हैं। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं भाइयों बहनों, बल्कि आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक जागरण और जनजातीय अस्मिता के सम्मान का एक विराट महोत्सव है। सबसे पहले मैं अपने संसदीय क्षेत्र बैतूल की ओर से भारत की प्रथम जनजातीय महिला महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओडिशा के एक छोटे से जनजाति गांव में जन्मी एक साधारण बालिका का भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, संविधान की महानता और सामाजिक समरसता की अद्भुत मिसाल है। महामहिम राष्ट्रपति जी, आपका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की अद्वितीय मिसाल है। आपने अपनी कर्मठता, धैर्य और सामाजिक उत्थान के प्रति अटूट संकल्प के बल पर न केवल उच्चतम संवैधानिक पद को सुशोभित किया है, बल्कि देश की हर बेटी, हर वंचित वर्ग और समाज के हर नागरिक के लिए आप प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है। आपका जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज जब आप बैतूल की इस जनजाति बहुल भूमि पर पधारी है, तब यहाँ का प्रत्येक जनजाति परिवार स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। महोदया, आपकी अंतर्वेदना और देश की जनजातियों के प्रति अथाह संवेदनाओं के फलस्वरूप धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन आदि कर्मयोगी, संसदीय संकुल विकास परियोजना, सिकल सेल एनीमिया, टीबी जैसी अनुवांशिक बीमारियों के प्रति ठोस कार्य योजनाएं बन सकी हैं।
1: मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने अपने संबोधन में कहा,
3: राजयोग और मेडिटेशन से जो शांति मिलती है वो अब मैंने खुद ने अनुभव किया है। मैं समझता हूँ, यहाँ नीचे में सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बहनें देखी, यहाँ भी बहुत से आदिवासी समाज के भाई बहन बैठे हैं। मैं सभी को आग्रह करूँगा कि जीवन में हमको शांति चाहिए। पहले पैसा की बात करो, मगर मन को शांति मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। मन को शांति मिलेगी, धार्मिक भावना होगी तो हम नीति से चलेंगे और भगवान को भी वो पसंद है। इसलिए मैं समझता हूँ आदिवासी सशक्तिकरण में आध्यात्मिक का भी ध्यान होना चाहिए और ऐसी संस्था से जुड़कर हमको जो हमारे जीवन में प्रगति करना है वो अच्छी तरह कर सकेंगे।
1: राष्ट्रपति जी द्वारा कलश एवं ध्वज स्थापना द्वारा महासम्मेलन के शुभारंभ की घोषणा की गई।

0: आध्यात्मिक जागृति आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का मूल आधार है। अपनी समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक जीवन शैली इन्हें अपनी अलग पहचान बनाने का एक अवसर देती है। इस बात को रेखांकित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा,
1: उपभोग की संस्कृति और संस्कृति पर आधारित आज की तेज भागती दुनिया में समाज के हर वर्ग की आध्यात्मिक सुचिता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के बल पर दीर्घकालीन रूप से समतापरक आचरण पद्धति और प्राकृतिक संपदाओं के प्रति संवेदनशीलता जीवन शैली विकसित की जा रही है। आज के तनाव और युद्धों से त्रस्त विश्व में इसकी आवश्यकता अतीत के किसी भी कालखंड की तुलना में और अधिक हो गई है। इसीलिए इस सम्मेलन तथा ऐसे प्रयासों का महत्व और भी बढ़ जाती है।
0: आध्यात्मिकता आदिवासियों की जीवन शैली में नैसर्गिक रूप से बसी है। इस बात पर बल देते हुए राष्ट्रपति महोदया ने कहा,
1: जनजातीय समुदाय की जीवन शैली सहज रूप से ही अध्यात्म की मूलभूत प्रेरणाओं के निकट होती है। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम आदिवासी जो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे रहते हैं और उनके जीवन शैली ये केवल कोई वो आध्यात्मिकता ही भरा हुआ है और सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है, जैसे कि गीली मिट्टी उसको जैसे बनाओ ऐसे बनते हैं। वो प्रकृति के पूजा करते हैं, लेकिन केवल प्रकृति नहीं पंचतत्व को पूजा करते हैं। ये धरती, ये आकाश, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, इसको पूजा करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन बनाने के, कोई मंदिर, कोई पूजाशाला बनाते नहीं।
0: राष्ट्रपति जी आगे कहते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति को कोई क्षति नहीं पहुंचाते, यह उनकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है।
1: धरती को क्षति पहुंचाते नहीं, जल को भी दूषित नहीं करते, तालाबों में नहाते, नदियों में नहाते, नदी में कोई कूड़ा फेंकता नहीं, तालाबों को कोई अपरिष्कार नहीं करते। धरती को जरूरत के मुताबिक कभी चोट पहुंचाते तो उसके पहले उसको नमन करते हैं, पेड़ पौधा पूजा करते हैं, वो सही है। आज तो गैस आ गया है, लेकिन एक दिन था पेड़ से ही हम खाना बनाते थे, लेकिन सूखे पेड़ को चुनते हैं। किसी भी कारण कोई पेड़ को चोट पहुंचाते कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो उसके पहले उनको नमन करते हैं, सूर्य को पूजा करते हैं। आप सोचिए सूर्य नहीं होता तो क्या होता, पेड़ पौधा नहीं होता तो ये जितने हवा परमपिता परमात्मा ने धरती पे दिए हैं वो खत्म हो जाता। आज पेड़ पौधा है इसीलिए वो रोटेट होता है। आज समुन्द्र नदी है इसीलिए बारिश हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए इसी दृष्टि से ये आध्यात्मिकता से आदिवासी समाज भरपूर है, फुट फुट का उनके मन में आध्यात्मिकता भरे हुए है। पेड़ पौधा में वो रहते हैं क्योंकि कभी कभी किसी आदिवासी उनको उनके वंशज, पेड़ पौधों के वंशज कहते हैं।
0: अपने उद्बोधन के अंत में बैतूल जिले और उनके निवासियों के स्वभावगत विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा,
1: मध्य प्रदेश का ये बैतूल जिला अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मुझे बताया गया है कि यहाँ के जनजातीय समुदाय ने अपने विशिष्ट परंपराओं, लोक ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखे हैं। बैतूल की जनजातीय संस्कृति में सामूहिकता, सहयोग, सरलता, ईमानदारी और आध्यात्मिकता जैसे उच्च जीवन

0: मूल्य सहज रूप से विद्यमान है। जब आध्यात्मिक और सेवा का संगम होता है तब तो समाज में स्थायी परिवर्तन आता है। मुझे विश्वास है कि ये महासम्मेलन सेवा और आध्यात्म के इस संगम की ओर लोगों को आकृष्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए हम सब मिलकर 2047 तक एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण करें और अधिक से अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें, जहां आध्यात्म, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण हमारी समावेश की विकास की आधारशिला बने। मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए अपनी हार्दिक बधाई देती हूं तथा सभी प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: आज के कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगायन के सामूहिक गायन से संपन्न हुआ। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हेलीपैड पर गरिमामयी विदाई दी गई। अन्य अतिथिगण भी अपने अपने गंतव्य स्थलों की ओर चल पड़े। श्रोताओं, ये थी महामहिम राष्ट्रपति के एक दिवसीय बैतूल प्रवास की रेडियो रिपोर्ट। वाचक योगेश्वर, संकलन प्रवीण चौरे, तकनीकी सहयोग कांता प्रसाद टिकारे और अशोक सोनारे, और प्रस्तुतकर्ता सचिन भागवत।

0: अभी आप सुन रहे थे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बैतूल का योगदान था और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किया गया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मालवी लोकगीत। कलाकार हैं स्वाति उखले और साथी।

लीजिए अब सुनिए हीरो फिल्म का ये गीत, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने और आवाज़ है रेशमा की।

लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा हुआ ये गीत, जिसे हृदयनाथ मंगेशकर ने संगीत दिया है। आवाज़ लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है लेकिन।

लता मंगेशकर की आवाज में लीजिए सुनिए आज का अर्जुन फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं अनजान और इस गीत की धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

नरेंद्र चंचल की आवाज़ में अभी आपने बॉबी फिल्म से ये गीत सुना, जिसे इंद्रजीत सिंह ने लिखा था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, जिसकी धुन बनाई है नुसरत फतेह अली खान ने। फिल्म का नाम है कच्चे धागे।

लता मंगेशकर की ही आवाज़ में लीजिए अब सुनिए नक्श लालपुरी की लिखी हुई ये रचना, जिसे रविंद्र जैन ने संगीत दिया है। फिल्म का नाम है हिना।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी

0: का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment. And it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक

0: गठबंधन सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparation for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow.

अभी आप सुन रहे थे संगदिल फिल्म का ये गीत, जिसे तलत महमूद ने गाया था। सज्जाद हुसैन ने इसे संगीतबद्ध किया था और राजेंद्र कृष्ण ने इसके बोल लिखे थे। और चित्रगीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए एसडी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत। गीता दत्त की आवाज़ है और फिल्म का नाम है प्यासा।

जितने गीत में लीजिए, अब सुनिए शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत, तर्ज शंकर जयकिशन की है और आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है रूप की रानी चोरों का राजा।

श्रोताओं, इस समय जो गीत आप सुन रहे हैं उसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत ओपी नैयर ने दिया था और इसे गीता दत्त ने गाया।

इसी के साथ चित्रगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है, लीजिए अब सुनिए श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

साथी। इसी पत्र में इन्होंने कुछ और नाम भी लिखे हैं और उनके स्थान का नाम है आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर, और यहाँ से ये नाम है शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित, ध्वनि, परी और उनके साथी। अगला खत हमारे पास है लेवाखेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से। ये श्रोता है नारायण भाऊ, विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी, संजना खर्चे, गणेश, कार्तिक खर्चे, ब्रूनो, उषा, सोरना, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी और उनके परिवार के सदस्य। अगला ये पत्र हमारे पास है छत्रपति संभाजी नगर से, और ये पत्र भेजा है इन श्रोताओं ने। इनके नाम है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। आप सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में 12 ओ क्लॉक फिल्म का गीत, लीजिए सुनिए।

अगला पत्र हमारे पास आया है मुकाम पोस्ट बोराला मालेगांव से। ये हैं दत्ता घायल, सुनीताबाई घायल, सानिका और गजानन घायल। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम और उनके साथी। दरियापुर बाभली महाराष्ट्र से हमें ये खत मिला है। ये हैं गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वडनीर अकोला से, बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। छत्रपति शाहू नगर

हिंगोली से पेंटर रामचंद्र इंगोली, सिद्धांत इंगोली, टीकू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम इंगोली और उनके साथियों का हमें पत्र मिला है। एक और खत हमारे पास है, ये लिखने वाले श्रोता हैं धर्मपुरी जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैज़ान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी। आप सुनना चाहते हैं केदार शर्मा का लिखा हुआ ये गीत जिसका संगीत रोशन ने दिया है। आवाज़ें हैं मुकेश और गीता दत्त की। फिल्म का नाम है बावरे नैन।

श्रोताओं, अगला पत्र हमारे पास है कंवर कलोनी बड़वाह से। ये हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति और मीनू श्रीमाली। राजस्थान छपड़ा से ये पत्र हमें लिखा है आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने। घंटाघर चौक खंडवासी संजय पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया का खत हमें मिला। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री और उनके मित्रों का हमें पत्र मिला। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति और रियांश ठाकुर का पत्र हमें मिला है। और आप सुनना चाहते हैं छोटी बहू फिल्म का ये दो गाना। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की। इंदिवर ने इसे लिखा है और संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने।

श्रोताओं, अगला पत्र हमारे पास है जतू का किशनपुर से, और ये लिखने वाले श्रोता हैं इमरान रिजवान शबाना आलम चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से वकील राही फिरोज आलम, प्रवीण अर्श बाबू और उनके साथी, चांदूर बिस्वा तालुका नांदुरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़से, रक्षाताई खड़से, ललिता संजना गणेश और कार्तिक खड़से, मालती चौधरी स्वाति प्रयाग चौधरी का भी इसमें नाम है। और अगला ये पत्र है यादव मोहल्ला सनावत से, ये हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ये पत्र हमें लिखा है इन श्रोताओं ने। यह है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल और उनके साथी, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश प्रीति नवनीत और उनके परिवार के सदस्य, आप सभी सुनना चाहते हैं शैलेंद्र का लिखा हुआ यह गीत जिसकी धुन शंकर जयकिशन ने बनाई, आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की, फिल्म का नाम अनाड़ी।

सोमानी नगर इंदौर से हमें खत लिखा है बीआर नामदेव, राजश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज, श्रीधि और उनके परिवार के सदस्यों ने। पालदा नगर इंदौर से हसीना भी मंसूरी, अमीना भी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी का भी खत हमें मिला। ग्राम लोहारी जिला खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल, शीला, गायत्री धनजे और उनके साथियों ने खत हमें लिखा। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद का पत्र हमें मिला। अशोकनगर बसमत से पार्वती सखाराम ठोके, महाराष्ट्र से ये पत्र है, श्रोता है पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित, सोनू, मोनू और उनके साथी। झुमरी तलैया से देव इंगोले, छकुली, छोटू दादा और टेलर आरडी इंगोले ने हमें पत्र लिखा। इनके साथ ही इनके बहुत सारे साथियों का भी इसमें नाम है। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाज़ों में दुनिया झुकती है इस फिल्म का ये दो गाना।

अगला ये पत्र हमारे पास है गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से। ये लिखने वाले श्रोता हैं रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र, पूजा विकी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी और उनके बहुत सारे साथी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का पत्र हमें मिला। नेपाल पैलेस सागर से खत लिखा है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। सुधीर नूतन, मीनाक्षी तिवारी, संदीप, गुनगुन, सुनीता शर्मा और उनके साथियों का पत्र हमें मिला है और ये पत्र इन्होंने हमें लिखा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये कहाँ से ये पत्र इन्होंने भेजा है। बहरहाल आप सभी सुनना चाहते हैं सहेली फिल्म का ये दो गाना लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ों में। इसे लिखा है इंदिवर ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। लीजिए सुनिए।

लीजिए अब सुनिए साथी फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत है नौशाद का। और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। देवा से अर्पिता, कल्पना, मंजू, अनिका, बेबी और साधना ने। उज्जैन से रानी, लक्ष्मी, बाबू, सोना, राकेश और उनके परिवार।

के सदस्यों ने। उज्जैन से ही नेहा, राहुल, सानिध्य और उनके साथियों ने हमें खत लिखा। आप सभी की पसंद पर लीजिए, सुनिए साथी फिल्म का ये दो गाना।

मन भावन कार्यक्रम में अगला ये खत हमारे पास है जसपुर उत्तराखंड से, और ये श्रोता है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, रानी, तबस्सुम, रुखसार, मोहम्मद आशिफ और उनके साथी, घंटाघर चौखंडवा से संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या, आदि, बीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे। आपने इस गीत को सुनवाने के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखा है। ये गीत है ताजमहल फिल्म से, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है और इसकी तर्ज बनाई है रोशन ने।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं मन भवन, और मन भवन कार्यक्रम में अगला खत हमारे पास है। राजपुर से ये पत्र हमें मिला है और ये लिखने वाले श्रोता हैं घीसू दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ, कुणाल दिलवारे और उनके बहुत सारे साथी। नांदखेड़ जिला वाशिम से अशोक चुंबले, दिनेश, रुपेश, लीलाबाई, चैताली, प्रीति चांदने और उनके साथी। ये अगला खत हमारे पास है, ये गौतम नगर जिला नांदेड़ से ये है और ये श्रोता हैं प्रभाकर जोंधले, आरती और उनके परिवार के सदस्य। आप सभी सुनना चाहते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत, जिसका संगीत ओपी नैयर ने दिया है। बोल SH बिहारी के हैं और फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

पांडर कौड़ा से ये पत्र हमें मिला है और ये श्रोता हैं अनिल बुरांडे, उषा, प्राची, अनुश्री, धनश्री, बलारशा से सूरज लूंढे, प्राची, एकलव्य और उनके साथी, ताज मंजिल लक्कड़ बाज़ार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार,

मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे का हमें खत मिला है। आप सुनना चाहते हैं लव मैरिज फिल्म का ये दो गाना। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, हसरत जयपुरी के बोल हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

कोल्हापुर से हमें ये खत मिला है और ये श्रोता हैं अतुल गौतमी धमदीना अरुण काले एडी कामले और उनके साथी। कोल्हापुर से ही एक और खत है, ये हैं तुषार कुरने, प्रसीक कामले, एकता कामले, मेघना कुरने, उत्कर्षा, अरुण और उनके परिवार के सदस्य। महसौल सीतामढ़ी बिहार से ये पत्र हमारे पास आया है और ये श्रोता हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज, नदीम अकरम, शमीम, अमन, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, बच्चू शेख, चीना शेख, क्वाथ बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर, नूर महल महसूल से हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबिहा अरहान, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू और उनके साथी। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या, करिश्मा कामले और उनके साथियों का पत्र हमें मिला है। आप सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में शकील बदायूनी का लिखा हुआ ये दो गाना, जिसकी तर्ज नौशाद ने बनाई और फिल्म का नाम है कोहिनूर।

अगला ये पत्र हमारे पास है छत्तीसगढ़ भाटापारा ददरेंगी से, और ये श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा।

सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से हमें एक खत मिला है और ये लिखने वाले श्रोता हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब पोत्रा, मुस्ताबा, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, दरियापुर बाभली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वडनीर अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। आप सुनना चाहते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भवन, ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज के कलाकार हैं
1: शंभू सिसोदिया।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आपने सुना श्री गणेश प्रसाद मिश्रा द्वारा राग मिश्र खमाज में ठुमरी गायन। तबले पर संगत दे रहे थे श्री मिहिर कुमार नट्टा और सारंगी पर थे श्री शंभु सिसोदिया। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ

सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 465.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा में कल सवेरे 5:53 पर इसी मीटर पर आपसे पुनः भेंट होगी। इस समय हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।